एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

सत्संग के प्रभाव से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य आदि सब मिलता है। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग सहज ही नहीं मिलता। सत्संगति आनंद एवं कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, शेष सभी फूल पत्ते के समान है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी सत्संग के प्रभाव से साधु बन जाते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु की दरस का प्यासा ये मन न जाने कहां कहां भटकता है। केवल श्रद्धा और भक्ति द्वारा ही प्रभु की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रभु की कृपा बरसती है तो जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है।

प्रभु की भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। मन को प्रभु की सेवा में अर्पण करने से हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और आनंद की अनुभूति होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 157।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: सकते हैं।
1: 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा, गाने सुहाने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। सुबह 9:00 पेश किया जाएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। सुरों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। जय हिंद गीतमाला, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए 12:00। सुनो सखी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:30। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा गैर फिल्मी भजन, फिल्मी फ्राइडे। ये विषय रहेगा आज के युवा मंच कार्यक्रम का, सुनिएगा शाम 5:25 पर। 6:05 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा ग्राइंदियां। कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। विषय रहेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 7:10 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 9:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वर्ष 2003 में आई कयामत फिल्म के गीत। कारवां सुरों का कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 9:30। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20, 11:00, 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही पर आधारित कार्यक्रम रात 10 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 1 बजे शाम 5 बजे, 7 बजे और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 शाम 5:05, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9। तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ ना जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। TK अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: द प्राइम मिनिस्टर सेड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशंस ऑफ कैबिनेट कॉलीग्स इट विल बी गिवन इट्स फाइनल शेप। He said as the second week of parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said that the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Meanwhile, Prime Minister Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Jhandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. President Draupadi Murmu, who is on a state visit to Romania, will hold talks with Romanian Prime Minister Ilie Bolojan at the Victoria Palace in Bucharest today. She will also address the Indo-Romanian Business Forum along with her Romanian counterpart, President Nico Sardian. In men's cricket, India defeated Zimbabwe by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Harare last evening. And that is the end of this news bulletin.
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुहानी।
4: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सुविचार के साथ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विनम्रता ही वह गुण है जो किसी भी इंसान को वास्तव में महान बना सकता है। जब किसी मनुष्य के पास ज्ञान, धन, यश, वैभव, बल होने के बाद भी उसमें अहंकार नहीं होता, तब उसका यही गुण लोगों के बीच उसके सम्मान का कारण बन जाता है। विनम्रता अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। विनम्र व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञानी नहीं मानता और सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है। विनम्र व्यक्ति अहंकार से दूर होता है और सभी को साथ लेकर चलता है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1999 की बात करते हैं। आज के दिन ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रथम सार्वभौमिक महिला धर्म सभा का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 1999 में ही अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2004 की बात करें तो इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा कॉल सेंटर आज के दिन शुरू करने का निर्णय लिया था। 2005 में कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने हेतु उत्तर और कोरिया के बीच आम सहमति आज के दिन बन गई थी। आज ही के दिन वर्ष 2006 में प्लूटोरिको की सुंदरी जुखेला रिवेरा मेंडोजा ब्रह्मांड सुंदरी 2006 चुनी गई। किन महान हस्तियों की जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1911 की बात करते हैं। आज के दिन जन्म हुआ था देश के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का। जी हाँ दोस्तों, पन्नालाल घोष नाम से विख्यात अमल ज्योति घोष एक भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। संगीत की शिक्षा उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से प्राप्त की थी। पन्नालाल घोष को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। पंडित पन्नालाल घोष 7 छिद्र वाली बांसुरी का परिचय कराने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने केवल 4 छिद्र वाली एक बांसुरी का आविष्कार भी किया था जिसकी लंबाई 40 से 42 इंच थी। वर्ष 1960 में आई कालजयी फिल्म मुगल-ए-आजम में संगीतकार नौशाद ने पंडित पन्नालाल घोष को गीत में बांसुरी का जादू बिखेरने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। आइए सुने मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत। इस गीत में बांसुरी का जादू पंडित पन्नालाल घोष ने बिखेरा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है और फिल्म अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया है।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कि इन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए। आपको बता दें 1924 में आज के दिन जन्म हुआ था उर्दू के विख्यात शायर और कवि नाजिश प्रताप गढ़ी का। 1937 में आज ही के दिन जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ। मनोज कुमार के विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं 1945 में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति अजीम प्रेम जी का। 1985 की बात करें तो सुप्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए ये भी आपको बता देते हैं। 2020 की बात करते हैं, मशहूर भारतीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन आज के दिन हुआ था। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और उलटते हैं, आपको बताते हैं 2017 में देश के विख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल का निधन आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन 2017 में ही भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का निधन आज के दिन हुआ। आज ही के दिन हिंदी और बांग्ला फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का निधन 1980 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उत्तम कुमार का जन्म 3 सितंबर 1926 को कोलकाता में हुआ था। पूरा नाम था अरुण कुमार चट्टोपाध्याय। उत्तम कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य रूप से बांग्ला सिनेमा में कार्य किया। अभिनेता होने के साथ साथ उत्तम कुमार फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार और पार्श्व गायक भी थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में एक माने जाने वाले उत्तम कुमार ने 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक बांग्ला सिनेमा पर अपना दबदबा बनाए रखा। बंगाल क्षेत्र में उन्हें महान नायक के रूप में जाना जाता है। जीवन काल में फिल्मों में करियर की बात करें तो उत्तम कुमार ने 211 फिल्मों में कार्य किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार सहित बहुत से पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किए, जिनमें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी खूब जमती थी। फिल्मी बातें अगर हम करें और हिंदी फिल्मों की बात करें तो छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद आश्रम, किताब, देश प्रेमी आदि उत्तम कुमार के अभिनय से सजी यादगार फिल्में रहीं। 24 जुलाई यानी आज के दिन

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्मदिन है। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, जिन्हें हम मनोज कुमार के नाम से जानते हैं, हिंदी सिने जगत के जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार, संपादक और राजनेता थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनोज कुमार का नाम सबसे सफल और बेहतरीन अभिनेताओं में आता है। विशेष रूप से मनोज कुमार को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। इन फिल्मों में मनोज कुमार की भूमिका इतनी जीवांत होती थी कि उन्हें उपनाम भारत कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा। 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ मनोज कुमार को कला और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में

उन्हें फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। रेशमी रुमाल, डॉक्टर विद्या, अपने हुए पराए वो कौन थी, गुमनाम, शहीद, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम, उपकार, आदमी, नीलकमल, यादगार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों के लिए मनोज कुमार को याद किया जाता है।

0: फूले पले।
1: आप सुन रहे हैं अभिनेता मनोज कुमार पर फिल्म आया पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत। आवाज महेंद्र कपूर और साथियों की है।

25 और 26 जुलाई को नगरोटा भगवा में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि कल यानी 25 जुलाई और 26 जुलाई को राजकीय महाविद्यालय नगरोटा भगवा में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनीज युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस मेले का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से चल रही अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने भारत को पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे से 7 विकेट से जीत दिलाई। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 21वां अध्याय, 3 पाउंड का कर। पहला सुझाव तो यह था कि गिरमिट पूरा होने के कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती वापस भेज दिया जाए, ताकि उनके इकरारनामे की मुद्दत हिंदुस्तान में पूरी हो। पर इस सुझाव को भारत सरकार मानने वाली नहीं थी, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि मजदूरी का इकरार पूरा हो जाने पर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान चला जाए, अथवा हर दूसरे साल नया गिरमिट लिखवाए और उस हालत में हर बार उसके वेतन में कुछ बढ़ोतरी की जाए। अगर वह वापस ना जाए और मजदूरी का नया इकरार नामा भी ना लिखे तो हर साल 25 पौंड का कर दे। इन सुझावों को स्वीकार कराने के लिए सर हेनरी वीन्स और मिस्टर मेसन का डेप्यूटेशन हिंदुस्तान भेजा गया। तब लॉर्ड एल्विन वाइसराय थे। उन्होंने 25 पौंड का कर तो नामंजूर कर दिया, पर वैसे हर एक हिंदुस्तानी से 3 पौंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे उस समय ऐसा लगा था और अब तक लगता है कि वायसराय की यह गंभीर भूल थी। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के हित का तनिक भी विचार नहीं किया। नेटाल के गोरों के लिए ऐसी सुविधा कर देना उनका कोई धर्म नहीं था। 3-4 साल के बाद यह कर वैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की स्त्री से और उसके हर 16 साल और उससे बड़ी उम्र के लड़के और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी लेने का निश्चय किया गया। इस प्रकार पति पत्नी और 2 बच्चों वाले कुटुंब से, जिसमें पति को अधिक से अधिक 14 शिलिंग प्रतिमास मिलते हों, 12 पौंड अर्थात 180 रुपये का कर लेना भारी जुल्म माना जाएगा। दुनिया में कहीं भी इस स्थिति के गरीब लोगों से ऐसा भारी कर नहीं लिया जाता था। इस कर के विरुद्ध जोरों की लड़ाई छिड़ी। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस की ओर से कोई आवाज ही ना उठाई जाती तो शायद वायसराय 25 पौंड भी मंजूर कर लेते। 25 पौंड के बदले 3 पौंड होना भी कांग्रेस के आंदोलन का ही प्रताप हो, यह पूरी तरह संभव है। पर इस कल्पना में मेरी भूल हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पौंड के प्रस्ताव को शुरू से ही अस्वीकार कर दिया हो, और हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध ना करने पर भी वह 3 पौंड का कर ही स्वीकार करती। तो भी उसमें हिंदुस्तान के हित की हानि तो थी ही। हिंदुस्तान के हित रक्षक के नाते वायसराय को ऐसा अमानुषी कर कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। 25 से 3 पौंड यानी 375 रुपये से 45 रुपये होने में कांग्रेस क्या यश लेती। उसे तो यही अखरा कि वह गिरमिटियों के हित की पूरी रक्षा ना कर सकी और 3 पौंड कर किसी न किसी दिन हटना ही चाहिए। इस निश्चय को कांग्रेस ने कभी भुलाया नहीं। पर इस निश्चय को पूरा करने में 20 वर्ष बीत गए। इस युद्ध में नेटाल के ही नहीं बल्कि समूचे दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों को सम्मिलित होना पड़ा। उसमें गोखले को निमित्त बनना पड़ा। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों को पूरी

हाथ बटाना पड़ा। उसके कारण कुछ लोगों को गोलियां खाकर मरना पड़ा। 10,000 से अधिक हिंदुस्तानियों को जेल भुगतनी पड़ी, पर अंत में सत्य की जय हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ। इसके लिए अटल श्रद्धा की, अखूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझकर उसके आगे झुक जाती, तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
6: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
8: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
9: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting.

0: मोहम्मद रफी की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में

0: ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में दो बदन फिल्म का गीत। संगीत रवि का है।

रवि की बनाई तर्ज पर शकील बदायनी का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था दो बदन फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की थी। लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: हेलो
7: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
6: फिर से?
7: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
8: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
8: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख
9: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
7: अरे
6: काट दिया।
9: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
6: फ्रॉड?
9: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे।
10: RBI कहता है,
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों आज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्मदिन है और आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पर फिल्माए कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी।

जनवाणी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की खूबसूरती तभी बढ़ती है जब कार्यक्रम में आप हमसे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़े होते हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय कुछ अलग है, कुछ हटके है।

0: दोस्तों कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। हमसे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। साथ ही बात करते हैं टाइम मशीन के विषय में। आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा या कहानियों में पढ़ा होगा, इंसान वक्त से आगे बढ़कर भविष्य की दुनिया में चला जाता है या अतीत में चला जाता है। ये कितना सच है इस बात की चर्चा तो इस कार्यक्रम में हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपको अतीत में जाने का अवसर मिले तो आप अपनी किस गलती को सुधारना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही विषय है आज के जनवाणी कार्यक्रम का। उठाइए फोन, डायल कीजिए 01892224391, कीजिए हमसे बात। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार
1: जी सर, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी सिसोदिया साहब, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है
0: जी। और भोलेनाथ की नगरी उज्जैन, क्या हाल है वहाँ के?
1: जी बहुत ही अच्छा मौसम बन चुका है, अभी हल्की हल्की सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर जी, और मतलब वातावरण बिल्कुल अच्छा ठंडा पड़ चुका है
0: जी। देखिए सावन के महीने में जब हल्की हल्की फुहारें पड़ती है ना, तो बस मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है।
1: हाँ जी, और सावन में तो कहीं से भी हो, मतलब महाकालेश्वर बाबा के दरबार में मतलब दूर दूर से मतलब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: जी, जी। और आपने बताया कि आज इसे सुन रहा था मैं कि हम पीछे जाके कोई गलती सुधारना चाहे तो हम कौन सी गलती सुधारे।
0: जी बिल्कुल,
1: जैसे कि हम जीवन में बहुत सारी गलती हमसे होती है, या वैसे गलती न होते हुए भी मतलब ऐसे कुछ पहलू बनते हैं तो हमें मतलब उस गलत ठहराया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इस हिस्से के बारे में कि पहले तो गलती अगर किसी से हो जाती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है ये।
1: जी हाँ, क्योंकि गलती को अगर हम स्वीकार कर लेंगे और उसको सामने वाले से माफी मांग लेंगे ना, तो उसका भी मतलब कहेगा कि हाँ चलो इनसे गलती हो गई, तो इन्होंने सामने से जवाब नहीं देते हुए हमसे माफी मांग ली
0: जी, और शायद उसका जो गिला शिकवा है, जो गुस्सा है, वो शांत भी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो मैं तो पहली बात तो गलती करने से बहुत डरता हूँ, गलती करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। अगर भूल चूक से कहीं गलती हो भी जाती है ना
0: जी बिल्कुल,
1: तो सामने वाले से तुरंत माफी मांग लेता हूँ
0: जी। लेकिन कोई ऐसी गलती आपने जिंदगी में की हो कि आप उससे परेशान रहते हैं कि भाई ये हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, और अतीत में जाने का आपको अवसर मिल जाए तो आप क्या उसको सुधारना चाहेंगी? कौन सी वो गलती होगी बताइए
1: जी। ऐसी तो सर मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कोई बड़ी गलती करी हो, या फिर ऐसे अब तक मुझे याद हो जो गलती में सुधारना चाहूँ, मुझे ऐसा नहीं है याद अभी तक
0: जी।
1: लेकिन बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गलती करे तो स्वीकार जरूर करे जी हाँ, और सामने वाले से माफी मांगे ताकि उसका दिल बड़ा बन जाए
0: जी। सिसोदिया साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की कार्यक्रम में, और बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका, आपने कार्यक्रम में पहला फोन किया। इसी तरह से जुड़ी रही आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। इस कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। और आज कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है वो है, यदि आपको अतीत में जाने का अवसर मिले तो आप अपनी किस गलती को सुधारना चाहेंगे। जी हाँ, इस विषय पर हमसे आप बात कर सकते हैं। हेलो जी, लगता है एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते थे लेकिन संपर्क टूट चुका है। सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध रहेगा कि जब भी हमें फोन करें कृपया नेटवर्क जांच लें, सिग्नल में रहकर हमसे बात करें, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। हेलो।
4: हेलो
3: जी, कौन बोल रही हैं?
4: मैं ब्रोस बोल रही हूँ।
3: बड़ोल से
4: जी,
3: जी नाम बताइए।
4: सिमरन
3: जी। सिमरन, क्या करती हैं आप?
4: मैं पढ़ाई करती हूँ।
3: कौन सी कक्षा में?
4: प्लस वन
3: जी। आज कार्यक्रम का विषय आपने सुना?
4: जी
3: जी, बताइए जी, कहिए क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर।
4: मैं कुछ भी कहना चाहूंगी
3: जी। आपसे कभी कोई जिंदगी में गलती हुई है, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई है?
4: नहीं, कोई गलती नहीं हुई है।
3: कभी नहीं हुई है? कभी ऐसा पछतावा नहीं हुआ है कि अगर ऐसे ना होता तो मैं आज ये कर सकती थी वगैरह वगैरह? कभी नहीं हुआ?
4: नहीं,
3: ऐसा
4: कभी नहीं।
3: जी यानी आप बिल्कुल परफेक्ट हैं अपने काम में और अपनी पढ़ाई में भी?
4: हाँ जी
3: जी। और कुछ कहना चाहेंगी?
4: नहीं
3: जी। शुक्रिया फोन करने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम। जी दोस्तों, हम चाहते नहीं हैं लेकिन भूल से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो इंसान से जरूर हो जाती है, आप माने या ना माने। हेलो जी, लगता है फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से अनुरोध रहेगा सभी श्रोताओं से कृपया नेटवर्क जांच कर हमें फोन करें, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। हेलो
5: संजीव जी, नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
5: देखिए, आपने अतीत की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहता पानी और गुजरा समय
3: जी
5: कभी वापस नहीं आता।
3: जी बिल्कुल नहीं आता।
5: ये चीज है, अलग है कि हम इंसान जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो करता ही रहता है।
3: जी बिल्कुल, और आत्म मंथन भी करते हैं। जी संपर्क टूट चुका है। सभी श्रोताओं से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कृपया नेटवर्क में रहकर हमसे बात करें।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। 01892224391 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। डायल कीजिए, कीजिए हमसे बात और प्रयास कीजिए नेटवर्क में रहकर हमसे बात करने की, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। कार्यक्रम में आज जो विषय हमने लिया है, यदि अतीत में जाने का अवसर आपको मिले तो आप अपनी किस गलती को सुधारना चाहेंगे। हेलो जी, लगता है फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 9:30 पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। कृपया रिली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चले जाओ।
1: अरे ऐसे मत लूट जाओ।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीनों से कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करनी थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ ना जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों में निरंतर कार्य किया और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को संसद में पारित किया जाए।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे और इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी और पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। सोनम वांगचुक ने कहा था कि ये विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद हुआ है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया है। राज्य सरकार जैव विविधता को सुदृढ़ करने और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इस उद्देश्य से जैव विविधता संरक्षण हितधारकों के नेतृत्व में एकीकृत प्रयास योजना यानी हाइबिस्कस शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुह ने शिमला में इसका शुभारंभ किया। इसके माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, जैव विविधता संरक्षण और जैव संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए वन विभाग को 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले की दुर्गम रोहरू डोरा क्वार सड़क पर निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सड़क परियोजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने डोडरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके बनने से क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़क परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और प्रशासन ने मेले को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता इस मेले का शुभारंभ करेंगे। मक्की की फसल में मिंजर आने की खुशी में प्राचीन काल से ही ये मेला मनाया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: वर्ष भर चंबा जिला के लोगों को मिंजर मेले का इंतजार रहता है और राजकाल से चली आ रही मिंजर मेले की परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। इस परंपरा को सहेजे रखने के लिए सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं। मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाली सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान इस वर्ष पार्श्व व पंजाबी गायकों को बुलाने के साथ ही हिमाचली कलाकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश में वर्षा और इससे जुड़ी घटनाओं में इस महीने 75 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा

0: कम्युनिटी लंगर का प्रावधान भी किया गया है, इनको फौरी राहत भी दिया गया है।
1: इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली है। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना जताई है, जबकि 27 जुलाई से एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने के आसार हैं। लाहौल स्पीति जिले में जाहलमा नाले पर पुल निर्माण कार्य के चलते आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार इस दौरान पुल के लिए आवश्यक भारी पुल घटकों की आवाजाही पर मुरम्मत का कार्य किया जाएगा। उधर बिलासपुर जिले में मंडी भराड़ी चौक से स्वारघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज व कल सामान्य वाहनों की आवाजाही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान वाहनों को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि टैरिफ सुधार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मुक्त व्यापार समझौतों की रणनीति से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत हुआ है, साथ ही देश के विकास के लक्ष्य को भी बढ़ावा मिला है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, पेंशन और वरिष्ठता में नहीं जुड़ेगी पीटीए शिक्षकों की प्रारंभिक सेवा। पंजाब केसरी का शीर्षक है, जारी रहेगी किन्नर कैलाश यात्रा। जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द है, हाईकोर्ट ने मांगा पकड़े गए वन्य जीवों का ब्यौरा। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, हिमाचल में सड़कों का होगा रोड सेफ्टी ऑडिट। दैनिक जागरण लिखता है, निजी स्कूल नहीं बेच सकेंगे वर्दी, कॉपियां व अन्य सामान। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब 4 दिन धीमी रहेगी बारिश, 27 से 29 तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। दिव्य हिमाचल के शब्द है, बोह में उजड़े 38 परिवार, 23 मकान तबाह। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चंबा में 3 जगह बादल फटे, कांगड़ा की बोह वैली में राहत कार्यों को पहुंची सेना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटना के बाद केंद्र सरकार ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम, दोषियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज नई दिल्ली में, पेपर लीक मामले को लेकर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना। फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को लेकर मसौदे को दिया जाएगा अंतिम रूप। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में समाप्त की अपनी 26 दिनों की भूख हड़ताल। जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की हाइबिस्कस योजना, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए 2 करोड़ रुपए। और प्रदेश में वर्षा व इससे जुड़ी घटनाओं में इस महीने 75 लोगों की मौत, 27 जुलाई से मानसून के फिर गति पकड़ने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद जनवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यदि आपको अतीत में जाने का अवसर मिले तो आप अपनी किस गलती को सुधारना चाहेंगे? 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो, हेलो जी, लगता है फोन कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे कार्यक्रम में अगले लिसनर का।

आपको याद दिला दें, इस रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा डायलिसिस, जीवन की नई डोर। विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित डॉक्टर नीतीश ठाकुर, गुर्दा रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला की FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए, रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026, समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, तभी आपसे ठीक से बात हो पाएगी।
1: जी, मैं बाहर आ गया।
0: जी,
1: मैं शिवेन बोल रहा हूँ।
0: शिवेन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी,
0: लंच से।
1: हाँ जी
0: जी, कहिए शिवेन, आज कार्यक्रम में जो विषय है वो आपने सुना है?
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग।
0: जी, लगता है फोन कॉल फिर से डिसकनेक्ट हो गई है।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
4: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
4: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
3: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available.
4: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa.
0: हेलो।
6: हेलो, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, जनवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, बोलिए।
6: जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अतीत में जो जाना है, इसके बारे में सब मेरा मानना ये है कि हम कहीं ना कहीं गलती हम करते हैं इसमें जाने की। कैसी गलती? देखो, अतीत में हम जाना चाहिए, लेकिन अगर हम अतीत से ज्यादा जाते हैं तो हमें परेशानी होती है।
0: जी लगता है आपने कार्यक्रम में जो विषय है वो ध्यान से नहीं सुना है। हम आपको फिर से विषय बता देते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, यदि अतीत में आपको जाने का अवसर मिले तो आप अपनी किस गलती को सुधारना चाहेंगे, यानी आप जो गलतियां कर चुके हैं।
6: गलती मैं इस गलतियों को सुधारना चाहूंगा जो आप अगर अतीत में जाने। सबसे पहले तो मैं ये गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा कि कभी भी मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। इस जैसे कि खासकर जो है अतीत में जाने से पहले, जैसे कि हमारे अतीत में क्या हो रहा है, मैं इस जानने की गलती कभी नहीं करूंगी। इसकी गलती को सुधारने की बड़ी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये गलती जो है हमारे जीवन में बड़ी हानिकारक हो सकती है।
0: जी शुक्रिया फोन करने के लिए राकेश जी। और लगता है राकेश जी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हैं और ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना वो चाहते हैं, और हम भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अतीत में अगर जाने की बात करें तो अभी तक विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि कोई ऐसी मशीन बन जाए कि हम अतीत में जा सकें। लेकिन ख्यालों में तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और उन्हीं यादों के सहारे हम जीते हैं, और कई बार वही यादें हमें परेशान भी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 01892224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: जी मैं शिवेन, वो पिछली बार कॉल कट हो गया था ना।
0: जी शिवेन बोलिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी गलतियां होती है, पहले तो गलती मत करो।
0: जी
1: अभी तो मेरी वैसे कोई गलती नहीं है जो मैंने पहले करी हो।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे कोई गलती होती है तो मैं माफी मांग लेता हूँ।
0: जी वो तो एक अच्छा गुण है, माफी मांग लेना। लेकिन कई बार जाने जाने में कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान लगाकर कभी नहीं पढ़ा और आपके थोड़े कम मार्क्स आए हैं, तो आप बाद में पछताते हैं, अरे अगर मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता तो आज मेरे बहुत ज्यादा नंबर आ सकते थे।
1: कभी ऐसा है
0: जी, इसी तरह की छोटी छोटी जो गलतियां, जो भूल हमसे हो जाती हैं, और हम यही जानना चाह रहे

0: आज के इस कार्यक्रम में कि अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो आप उसे सुधारना चाहेंगे या नहीं सुधारना चाहेंगे, और इन यादों को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया फोन करने के लिए शिवांश, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी दोस्तों, 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, आप भी हमसे बात कर सकते हैं इस विषय पर।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: जी दोस्तों, जनवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
4: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
4: विनोद बोल रहा हूँ जी, रात से।
0: विनोद जी, थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाइए या उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए।
4: ठीक है जी।
0: जी, विषय के बारे में बात कीजिए।
4: जी, जैसे कि आपने आज विषय रखा है कि हम कोई गलती करते हैं तो या तो उसका हम सुधार करें या फिर उसके लिए माफी मांगे। और
0: जी, फोन कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। सभी श्रोताओं से हमारे एक बार फिर से अनुरोध रहेगा, जब भी हमें फोन करें कृपया नेटवर्क जांच लें, नेटवर्क में रहकर हमसे बात करें, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: जी, किसी कारण मेरा फोन कट गया था
0: जी।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई समय मिलता है, चांस मिलता है, तो हम उसको ठुकरा देते हैं और बाद में पछतावा होना पड़ता है
0: जी, बिल्कुल।
1: या किसी दूसरे आदमी का कोई भला होना होता है, या उसका हमारे द्वारा किया हुआ कार्य उसकी भलाई कर सकता है, उससे वो हमको सारी उम्र जो पछतावा होता है। तो हम अतीत में न जाते हुए आने वाले समय में ये सोचें कि हमसे ये गलती हुई है, ये दोबारा गलती हमसे ना हो, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से, महेंद्र सिंह राणा
0: जी। राणा जी, आपसे कोई गलती हुई है लाइफ में, जिंदगी में या नहीं?
1: देखिए, मैं तो पहले क्या चाहता हूँ, कह चुका हूँ कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है
0: जी, बिल्कुल।
1: कोई ना कोई जाने अनजाने में हर रोज कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। बाकी बहता पानी और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता
0: जी, वापस नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ दिल में टीस जरूर रह जाती है कि अगर ये ना हुआ होता तो ऐसा होता।
1: हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कहता हूँ कि जाने अनजाने में इंसान से बहुत बड़ी गलतियां हो भी जाती हैं, तो आने वाले समय में हमको ये विचार करना चाहिए कि ये जो गलती मेरे से पहले हुई है अब दोबारा नहीं करूंगा, जो आगे चांस मिलेगा तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
1: ठीक है संजीव जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ भैया नमस्ते।
0: नमस्ते, जनवाणी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी जांगड़े साहब, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं
0: जी। विषय सुना है आज के कार्यक्रम का?
1: बिल्कुल, शुरुआत से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: जी। क्या समझे?
1: यही है भैया, हम तो जैसे अपने पुराने दौर को याद करते हैं तो ऐसी बहुत ज्यादा कोई गलती या फिर पछतावा वाला तो समय नहीं रहा है
0: जी।
1: लेकिन ये जरूर लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई और बेहतर कर सकते थे। हालांकि जितना किए हैं उतना पर्याप्त है
0: जी।
1: लेकिन अब उस समय कुछ संसाधन की भी कमी रही थी, सड़क व्यवस्थाएं उतने दुरुस्त नहीं थे, गाड़ियों का उतना व्यवस्था नहीं था
0: जी।
1: लेकिन आज तो सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो आज के दौर और उस दौर की तुलना नहीं की जा सकती
0: जी।
1: और बचपन में या पुराने समय में ऐसी कोई में याद नहीं है कि बहुत ज्यादा अफसोस हो।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपकी जिंदगी जो है वो इस तरह से गुजरी है कि आपको कोई मलाल नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको पछतावा हो और आप उस भूल को सुधारना चाहते हो।
1: और रेडियो के क्षेत्र में आए हैं तो भैया रेडियो में तो अच्छे लोग ही आ पाते हैं।
0: क्या बात है जी। देखिए, आप अच्छे हैं तभी आप दूसरों के लिए भी ये कामना रखते हैं
1: जी।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बस भैया, रेडियो का जो योगदान है वो काफी ज्यादा हम शीर्ष पर मानते हैं। लगभग 10 साल की उम्र से रेडियो से जुड़ना हुआ है और तब से लगातार अभी 22-23 साल रेडियो तो केवल सुनते हो गए हैं
0: जी। चलिए, हम तो यही दुआ करेंगे आप इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम। शुक्रिया फोन करने के लिए। आपको सुना रहे हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन सा बोल रहे हैं?
1: सर नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, गोपालपुर सरका घाट से।
0: जी बोलिए नेगी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: सर बहुत बढ़िया विषय है और दिल को छूने वाला विषय है। इंसान गलतियों का पुतला है सर।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये गाना भी बहुत सही लगाया आपने कि जिसने पाप ना किया कौन सा इंसान है जो जिसने गलती नहीं की।
0: जी और देखिए, कोई मान लेता है कोई नहीं मानता है।
1: जी जी, और जितना छोटा आदमी उतनी छोटी गलती और जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती। इंसान से लेके प्रधान तक और प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति गलतियों का पुतला है।
0: जी यूं तो बोलते हैं कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें कचोटती रहती हैं कि अगर ये ना होता हम कुछ और कर लेते। तो आपकी जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा आया है वक्त?
1: सर बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे, और हमेशा आदमी भरोसे पे ही धोखा खाता है। अतीत की गलतियों से सीख कर जीवन में सुधार लाने का सबसे पहले गलती को ईमानदारी से स्वीकार करना
0: जी,
1: और जो अपराध बोध मतलब जो हमारे में अंदर में गिल्ट एक होता है पश्चाताप की भावना उसको छोड़ देना और नया संकल्प लेकर के जिंदगी को जीना जो है वही सबसे बड़ा सुधार है। क्योंकि गलतियों को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे के लिए सुधार नहीं करेंगे। सबक याद रखना चाहिए, दर्द याद नहीं रखना चाहिए सर। जो गलती हो गई उसको दुख को धोने से जो है वो हमें मतलब बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता
0: जी।
1: और खुद को माफ करना जो है सबसे बड़ी सुधार है।

0: देखा कि उस पश्चाताप की आग में जलते रहना हर वक्त और खुद को कोसना या दुख जो है वो इतना ज्यादा होना कि इंसान बहुत सारे तो आत्महत्या तक करने के लिए आमदा हो जाते हैं सर
1: जी। तभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वापस जाने का मौका मिले उस दौर में जब आपसे वो गलती हुई है, तो ऐसी कोई गलती अगर आपको याद हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।
0: सर बहुत सारी गलतियां हैं जो कि हुई हैं
1: जी।
0: और उसमें मैं ये कहूंगा कि एक विशेष तरह की जो गलती कहा जाए या पछतावे की बात कही जाए तो वैसा तो नहीं है, लेकिन रिश्तों में, कैरियर में, व्यक्तिगत आदतों की वजह से बहुत सारी हर इंसान से हमसे भी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो आदमी को मात खाना पड़ती है या चोट पहुंचती है। लेकिन उसका सुधार सिर्फ एकमात्र यही है कि वर्तमान पर ध्यान दें और अपने कामों में सुधार लाएं। अतीत को बदला नहीं जा सकता सर
1: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
0: अतीत में सोचना और अतीत का पश्चाताप करना जो है सबसे बड़ी बीतीता ही विसार दे आगे की सुधी ले। कविराज ने ये बहुत बढ़िया कहा है गिरधर जी ने।
1: जी, शुक्रिया निगी साहब कार्यक्रम में फोन करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए।
0: नमस्कार।
2: अभी अलविदा मत।

जी दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनवाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गाए इस गीत के साथ, चुपके से कोई आएगा। साजिद वाजिद का संगीत निर्देशन है और बोल हैं फैज अनवर के, और ये फिल्म है हेलो ब्रदर।

धड़कन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में

कार्यक्रम है गीतों का कारवां। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म ताल से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने। ए आर रहमान का संगीत है और बोल है आनंद बख्शी के।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश जावेद अली और साथियों की आवाज में। सैयद कादरी के बोलों को सुरों में पिरोया है प्रीतम ने, और ये गीत हमने लिया है फिल्म तुम मिले से।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM धर्मशाला 103.4 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है गीतों का कारवां, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

एक्शन रिप्ले। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेय घोषाल की आवाज में, धुन बनाई थी प्रीतम ने और बोल थे इरशाद कामिल के, और इसी गीत के साथ कर...

शय घोषाल के गाए इस गीत के साथ थे। कार्यक्रम गीतों का कारवां यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

पहाड़ों के सुर हिमाचली गीतों के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना करनैल राणा का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अशोक चौधरी की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी धर्मशाला के संग। और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है नरोत्तम और साथियों ने।

आप सुन रहे हैं हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है महेंद्रू राम और साथियों ने।

इसी लोकगीत के साथ है आज का ये कार्यक्रम पहाड़ों के सुर अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून बनाएगी और इसे लेकर एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक होगी जिसमें इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले को लेकर सतर्क है।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद हुआ है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित युवा कार्यक्रम विभाग में उन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर अब 25 हो जाएगी। विवेक भाटिया की नियुक्ति 5 वर्ष या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकार को विवेक भाटिया को तुरंत प्रभाव से वर्तमान दायित्वों से मुक्त करने को कहा है। इस समय वे मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव के अलावा उद्योग विभाग के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क बेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि हुई है। ऊर्जा की बढ़ती लागत ने मुद्रास्फीति में फिर से बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। प्रदेश में वर्षा और इससे जुड़ी घटनाओं में इस महीने 75 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में भूस्खलन के कारण 136 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित है, जबकि 64 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा राज्य में 375 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है। इधर मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना जताई है, जबकि 27 जुलाई से एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने के आसार है। कुल्लू जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जिले के हनुमान टिब्बा, सारपास, रोहतांग, दर्रे और अन्य ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बीती रात ताजा हिमपात हुआ है। जिले में अधिकांश नदी नाले उफान पर है। ऐसे में पार्वती चरण 2 पावर स्टेशन के पुलंगा बांध से बीती रात लगभग 30 क्यूमिक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। ऐसे में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से पार्वती नदी के नजदीक न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। लाहौल स्पीति जिले में जाहलमा नाले पर पुल निर्माण कार्य के चलते आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार इस दौरान पुल के लिए आवश्यक भारी पुल घटकों की आवाजाही व मुरम्मत का कार्य किया जाएगा। इधर बिलासपुर जिले में मंडी भराड़ी चौक से स्वारघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज व कल सामान्य वाहनों की आवाजाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान वाहनों को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम जय हिंद की गीतमाला।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के गाए इस देशभक्ति गीत के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और बोल हैं आनंद बख्शी के।

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत उदित नारायण और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में, आदेश श्रीवास्तव का संगीत निर्देशन और नुसरत बद्र के बोल हैं। ये देशभक्ति गीत हमने लिया है फिल्म दीवार से।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
5: Nexa.
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि

जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जमीन फिल्म से ये देशभक्ति गीत लीजिए अब सुनिए। इस गीत को गाया है शान के और साथियों ने, संगीत दिया है इस गीत में हिमेश रेशमिया ने।

जमीन फिल्म के गीत के साथ आज का ये देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको

0: बता दें कि कूर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
1: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कूर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
2: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
1: तो हम बात कर रहे थे कैलपोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैलपोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहां प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
1: जी।
0: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
1: जी।
0: कूर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
1: जी।
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
1: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपोध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
3: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
4: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग? इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
3: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
4: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
5: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
4: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
3: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
4: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
5: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
4: भाई वाह।
5: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
4: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
5: अच्छा,
4: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
5: वाह,
4: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
5: हाँ, ये तो है।
3: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
4: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
5: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
4: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
5: आई? वो कैसे?
4: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
5: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
4: वो कैसे?
5: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
4: भाई वाह।
3: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
4: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
5: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
6: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
5: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
6: मैं क्योटो देखूंगा
5: और मैं ओसाका।
6: क्यों नहीं, चलो
5: चलो।
3: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
6: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
5: आ, चलो।
6: संभल कर।
5: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
6: बचे।
3: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
6: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
5: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
6: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
5: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
6: हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
0: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
4: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
3: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
4: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
3: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
4: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
3: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। इस बुढ़िया को कहां रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
4: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
3: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
4: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
3: नमक का मोल पूछने।
5: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ, ठीक है।
3: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
5: जी, फरमाइए।
3: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
3: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
5: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
3: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
5: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
3: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब?
1: हाँ, आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अब भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में क्रांति फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। उदित नारायण और अभिजीत की आवाजों में लीजिए सुनिए मस्ती फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं, संगीत आनंद राज आनंद का है।

मस्ती फिल्म का गीत तभी आपने सुना। इस गीत को गाया था उदित नारायण और अभिजीत ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर लिजिप्सनीय समीर का लिखा गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। ये गीत हमने लिया है दिल है तुम्हारा फिल्म से।

0: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए अनजानी फिल्म का गीत, आवाजें हैं साधना सरगम और सुरेश वाडकर की। संगीत राजेश रोशन का है।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अनुराधा पोडवाल की आवाज में साजन फिल्म का ये गीत। संगीत नदीम श्रवण का है।

सैनिक भाइयों, साजन फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

सैनिक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम है सुनो सखी, और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सीमा। सबसे पहले सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही स्वागत आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सुनो सखी। तो चलिए सखियों, सुनने सुनाने का ये सिलसिला शुरू करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज, क्या कुछ कह रहा है ये मौसम, या यूं कहें क्या कुछ दिखा रहा है हमें ये मौसम इन दिनों। कभी झमाझम बारिश तो कभी गुनगुनी सी धूप, और आज मौसम बहुत ही सुहावना है, हल्की हल्की सी धूप खिली है बाहर, और बरसात का मौसम है सखियों, तो रिमझिम बरसती बूंदे सावन के इस एहसास को और जवां कर देती है। जी हाँ, ये सावन लेकर आता है बागों में फल फूलों की बहार, हरी हरी चूड़ियों के संग जब मेहंदी लगे हाथों के जुड़ जाएं तार, जी हाँ यही तो है सावन की बहार। आम और पीपल के पेड़ों पर जब झूले सज जाएं और सखियां मिलकर कुछ गुनगुनाने लग जाएं, तो समझिए सावन आ गया। बिल्कुल सखियों, बरसात का ये मौसम बारिश की फुहारों के साथ लेकर आता है खूब सारे पर्व त्योहार और खुशियां बेशुमार, जिसकी शुरुआत होगी आने वाले त्योहारों से। जी हाँ, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन, ये सब त्यौहार बस आने ही वाले हैं, और साथ ही आने वाली हैं ढेरों खुशियाँ हमारे घर आंगन में। तो सखियों, हर त्यौहार को पूरे जोश और पूरी उमंग के साथ मनाएं, फिर चाहे वो त्यौहार बड़ा हो या छोटा। बल्कि हम तो ये कहेंगे सखियों कि अपने पारंपरिक त्यौहारों को तो बहुत ही धूमधाम से मनाएं, जो भी उनकी मान्यताएँ हैं उन्हें पूरी शिद्दत पूरी श्रद्धा से पूरी करें, और हाँ अपने हर पल को जिएं हमेशा खुशी से जी भर के। और क्योंकि सखियों आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को कार्यक्रम सुनो सखी में हम बात करते हैं उड़ान की। जी हाँ, उड़ान सपनों की, उड़ान उन्हें पूरा करने की, उड़ान मंजिल को पा लेने की, उड़ान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेने की। जी हाँ सखियों, सपने हम सभी देखते हैं, और कहीं ना कहीं मन में उन्हें पूरा करने की इच्छा या कामना भी ज़रूर रखते हैं, लेकिन यूं ही बैठे बिठाए तो सपने पूरे नहीं होंगे, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, जी हाँ हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और अगर चलते चलते कहीं ठोकर खाकर गिर भी गए तो फिर से उठना पड़ेगा भाई, और दुगनी रफ्तार के साथ जुट जाना पड़ेगा अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने में। एक और बात सखियो, ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डटे रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी आशा, इसी अभिलाषा के साथ सखियो अब चलते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और

आपको आज की प्रेरणा भरी कहानी की ओर ले चलते हैं, जो कहानी है आत्मविश्वास की, जो कहानी है जीत की। जी हाँ, हिसार की छोटी सी गलियों और ओलंपिक पदक को जीतने की ये कहानी है। कई खिताब अपने नाम करने के साथ साथ अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण सम्मान पाने वाली ये बैडमिंटन खिलाड़ी और कोई नहीं, जी हाँ आप समझ ही गए होंगे, साइना नेहवाल हैं, जो कि हर युवा के लिए प्रेरणा है, हर लड़की के लिए एक मिसाल है। ये प्रेरणा है सखियों, हम सभी बहनों के लिए, हम सभी सखियों के लिए, हम महिलाओं के लिए। तो जानेंगे आज उनके इस अद्भुत सफर के बारे में, साथ ही उनकी उपलब्धियों और पुरस्कारों से करवाएंगे आप सभी सखियों को रूबरू। लेकिन उससे पहले सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत आप सभी सखियों को।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
4: जी सखियों, गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सीमा। बातें हो रही हैं सखियों उड़ान, जी हां, सपनों की उड़ान की बातें कर रहे हैं और उसके अंतर्गत साइना नेहवाल का जीवन काल हम इस कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं। साथ ही उनका संघर्षपूर्ण जीवन और क्या कुछ उपलब्धियां रहीं वो सब साझा कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो बात करें उनके जन्म की तो 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल और माता उषा रानी नेहवाल दोनों ही बैडमिंटन में रुचि रखते थे, जिससे इन्हें बचपन से ही घर में खेल का माहौल मिला। इनकी माँ राज्य स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुकी थी। इनके परिवार को कुछ समय के बाद हैदराबाद जाना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें सखियों तो वो कैम्ब्रिज हाई स्कूल हैदराबाद से हुई। आगे की पढ़ाई सेंट एन्स कॉलेज फॉर वीमेन हैदराबाद से इन्होंने पूरी की। लगभग 8 की आयु में इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इनका भरपूर सहयोग दिया इनके माता पिता ने। इनके माता पिता रोज सुबह अभ्यास के लिए इन्हें कई किलोमीटर दूर स्टेडियम तक ले जाते थे। इनके शुरुआती कोच नानी प्रसाद राव रहे और बाद में उन्होंने प्रसिद्ध कोच पुलेला गोपी चंद की अकादमी में प्रशिक्षण लिया और जहां उनकी प्रतिभा और निखरी और इनके खेल में भी और निखार आया। बहुत ही कम उम्र से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उन्होंने भारत की अग्रणी बैडमिंटन खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई। सखियो भी मानती हैं कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 2006 में फिलीपींस ओपन जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 2008 में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी। इसके बाद उन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा। बात करें 2010 की तो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। 2015 में वे विश्व की नंबर वन खिलाड़ी बनी। साल 2018 राष्ट्रमंडल खेल में फिर से स्वर्ण पदक उन्होंने जीता और इतिहास रचा। सम्मान और पुरस्कारों का ये सिलसिला यहीं थमा नहीं बल्कि उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 2009 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2010 में ही पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया। साइना ने भारत में बैडमिंटन को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सफलता से देश में बैडमिंटन के प्रति रुचि बढ़ी और अनेक युवाओं ने इस खेल को करियर के रूप में अपनाया। इनका जीवन सखियों हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर लक्ष्य हमारा स्पष्ट हो और मेहनत लगातार की जाए तो असंभव सा लगने वाला कार्य भी, असंभव से लगने वाले सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। और उनका मानना है कि खेल हो या जिंदगी की कोई भी सीख या जिंदगी का कोई भी पड़ाव, उसमें चाहे हार हो या जीत हो, दोनों से ही सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और कहते भी हैं ना सखियो कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इसी विषय पर बातचीत आगे भी होगी, लेकिन फिर से सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जी सखियो, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और सही कहा है, अपनों का साथ हो, परिवार का सिर पर हाथ हो तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए हमारा परिवार हमारे साथ है, और हार के बाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी परिवार हमारे साथ हैं। तो साइना नेहवाल भी मानती है कि उनकी हर सफलता में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा त्याग है उनका। उनके पिता ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कर्ज और अपनी बचत का सहारा लिया ताकि साइना का सपना पूरा हो सके। साथ ही साइना ने भी कभी हार नहीं मानी और कई चोटों बल्कि बहुत ही कठिन दौर के बावजूद उन्होंने बार बार कोर्ट पर अपनी वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया। उनका संघर्ष लाखों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। साथ ही वो विश्व स्तर की खिलाड़ी बनने के बाद भी बहुत ही सादगी से अपना जीवन जीती हैं और वो फिटनेस और संतुलित खानपान को सफलता का महत्वपूर्ण आधार मानती हैं। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और हर युवा की आदर्श साइना नेहवाल कि हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें बैडमिंटन से पहले साइना कराटे सीखती थी और उनके पास ब्राउन बेल्ट भी है। वर्ष 2015 में साइना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। साथ ही ओलंपिक पदक जीतने वाली भी साइना पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। और उन्होंने अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है प्लेइंग टू विन। और जी हाँ सखियो, मन की ही बात है और सच भी कहा है उन्होंने कि मन जो है वो हमारे मन की बहुत अहम भूमिका होती है हर हमारी उपलब्धि पर। और देखिए, अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा हम सभी ने मजबूत रखना है और अपने इरादों को कभी डगमगाने नहीं देना है। रास्ते आड़े तिरछे पथरीले जैसे भी हों, बस उन पर निरंतर चलते रहना है। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठीक इस गीत की तरह जो अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं जिसमें मंजिल से बेहतर रास्ते नज़र आ रहे हैं। और सखियो, जब इन रास्तों पर किसी का साथ हमें मिल जाता है तो सफ़र और भी सुहाना हो जाता है, क्यों सही कहा ना। तो चलिए, आपका और हमारा साथ भी तो कुछ ऐसा ही है सखियो, प्यारा सा ये साथ यूं ही बना रहे और इस सफ़र का भी हमें कहाँ पता चलता है। समय हो रहा है कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ रुख करने का, ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत सखियो।

सखियों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि आप सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात जुट जाइए। देखो कहां लेके जाने लगी। यकीन मानिए सखियों, एक ना एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इसी आशा के साथ अब लेते हैं आपसे अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ भी कि अगले किसी कार्यक्रम में फिर से होगी आपसे मुलाकात, कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ।

चलते चलते बता दें सखियो, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह। इसी के साथ प्यारी सखियो नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जाँच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
3: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the fifth consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 8 locations today across Delhi, Uttar Pradesh and Punjab in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. ED said the investigation arises from a CBI case relating to fraud involving approximately 450 crore rupees. Further investigation is underway. BJP National President Nitin Naveen has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP president stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: ये फिल्म आया था और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा। देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज़्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हरे रंग की जहाँ बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था, प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूँ, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हैं जिन्हें ब्लैक एंड वाइट पसंद हैं और उनका कहना है कि ब्लैक एंड वाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता हैं काला रंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता हैं जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना ये है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गाँव चले जाते हैं, जहाँ घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र कहा है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नज़ारे को देखने के लिए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफ़र किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती हैं कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूँ तो ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूँ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम, ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत ज़रूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने ज़रूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि ये आरती मुखर्जी की आवाज़ है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की ये फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूँ, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि ज़िंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं ये बचकानी सिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है, लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेनाल का झरना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मज़ा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इस इबारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी के बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ, जैसे खिड़की खोलते ही एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज़्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियाँ तो हैं, पहाड़ और वादियाँ दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियाँ भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मज़ा अलग होता है, और गौर से सूर्योदय देखने का मज़ा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहाँ बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के ज़रिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भाग दौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएँ दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद हैं क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की,
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
2: या

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफ़र है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: विविध भारती से बोल रही हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
3: ये शाम मस्तानी।
2: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
3: दिल इंसान का एक तरह।
2: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
5: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और

0: पुत्र सहित तीन लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989, जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले तीन दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

0: किया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा स्थित दुर्गेश अरण्य अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में थीमेटिक गार्डन परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से मुख्य वन्य जीव संरक्षक को 4 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि थीमेटिक गार्डन जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान व इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके तहत फिकेरियम विकसित कर इसमें फाइक्स की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि परियोजना के पूर्ण होने पर यहां आने वाले पर्यटकों को यात्रा का बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और AI आधारित विश्लेषण के माध्यम से वर्ष 2023 से 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 11 दुर्घटना संभावित कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास व रखरखाव के लिए 3,832 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिनमें से 3,818 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में 30 जून तक 1,511 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 1,109 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंडी जिले के जोगेंद्रनगर उपमंडल के गुम्मा क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक चट्टाने गिरने से एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का सिविल अस्पताल जोगेंद्रनगर में उपचार चल रहा है। कुल्लू जिला के सुल्तानपुर निवासी ये सभी लड़बड़ोड़ स्थित सिमसा माता मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे थे। मृतक महिला की पहचान रामेश्वरी शर्मा के तौर पर हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की समृद्ध देव परंपरा की प्रतीक राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा कल 25 जुलाई से शुरू हो रही है। करीब 2 दशक बाद आयोजित हो रही ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होगी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल की समृद्ध देव परंपरा का प्रतीक राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा इस वर्ष 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है। लगभग 2 दशक बाद आयोजित हो रहे इस पावन यात्रा में लाहौल के अधिष्ठाता देव राजा घेपन देवी हिडिम्बा और ठारानाग देवताओं के साथ अपने भ्राता देवता जमलू से मिलने के लिए मलाणा रवाना होंगे। करीब 136 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि राजा घेपन इससे पहले 1970, 1984, 1994, 2005 और 2008 में भी मलाणा की यात्रा कर चुके हैं। ऐतिहासिक देव यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लाहौल और कुल्लू के बीच सदियों पुरानी आस्था परंपरा और भाईचारे का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालुओं में इस पावन यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान को याद किया जाता है। ये पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और करदाता हितैषी कर प्रशासन की दिशा में देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए, जिसका विषय है शिवा परियोजना के तहत जापानी फल देगा बागवानों को आर्थिकी को मजबूती। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
3: हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है और यहाँ की सेब बागवानी न सिर्फ 2.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी है बल्कि प्रदेश की आर्थिकी में भी सहयोग देती है। हाल ही के वर्षों में सेब बागवानी प्रदेश के अधिकतर जिलों में विस्तार कर चुकी है और राज्य के फल उत्पादन में सेब का योगदान 79% है, मगर अभी भी प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेब बागवानी नहीं होती अथवा भौगोलिक स्थिति के चलते सफल नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्रों में बागवानी को लोगों की आजीविका के मुख्य स्रोत बनाने के लिए शिवा परियोजना चलाई जा रही है ताकि इन क्षेत्रों में बागवानों को सेब के विकल्प के रूप में कई अन्य फलों की बागवानी विकसित हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई व मूल्यवर्धन HP शिवा परियोजना का उद्देश्य राज्य के उपोषण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बागवानी की क्षमता का दोहन करना है। युवा आबादी का पलायन, कृषि गतिविधियों का परित्याग, सिंचाई क्षमता का अक्षम उपयोग और फसल विविधीकरण की आवश्यकता ने HP शिवा जैसी परियोजना को अनिवार्य बना दिया है। HP शिवा परियोजना लगभग 1,292 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 52 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 15,000 किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे और किसानों को सब ट्रॉपिकल फलों जैसे मीठा संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, जापानी फल की आधुनिक, व्यावसायिक और मार्केट आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक लगभग 1,140 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अब तक लगभग 330 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत लंझता में HP शिवा परियोजना के माध्यम से जापानी फल का क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। लगभग 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित इस क्लस्टर में कुल 37 किसानों की जमीन पर 2,000 से अधिक पौधों को इस वर्ष फरवरी माह में रोपित किया गया है। इस क्लस्टर के पूरी तरह क्रियाशील हो जाने पर जहां किसानों व बागवानों की आर्थिकी में सुधार होगा, वहीं जिला बिलासपुर जापानी फल तैयार कर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित करेगा। बागवानी विभाग द्वारा HP शिवा परियोजना के माध्यम से बिलासपुर के लंझता क्लस्टर में फुयू प्रजाति के जापानी फल के पौधों को सफलतापूर्वक रोपित किया जा चुका है और प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की गई है, जिससे जहां भविष्य में प्रत्येक पौधे की उपज से लेकर मार्केट तक की पहुंच की निगरानी की जा सकेगी, वहीं बागवानों को भी बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जिला बिलासपुर में जहां जापानी फल का ये दूसरा जबकि घुमारवीं उपमंडल का पहला क्लस्टर है। इस बीच किसान बहुफसली खेती मल्टी क्रॉप के तहत लहसुन, प्याज, मिर्च, गेहूं जैसी फसलें भी तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें न केवल अतिरिक्त आमदन होगी बल्कि क्लस्टर में स्थापित जापानी फल के पौधों का बेहतर पोषण भी हो सकेगा। इस संबंध में लाभान्वित किसान अंजलि ठाकुर का कहना है कि HP शिवा परियोजना के माध्यम से उन्हें जापानी फल का बागीचा तैयार करने का अवसर मिला है। पहले ये जमीन बेकार पड़ी थी, लेकिन अब जापानी फल के पौधे रोपित हो जाने से जहां भविष्य में बेहतर आमदनी होने की उम्मीद है, तो वहीं सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्राप्त हो जाने से इस समस्या का भी समाधान हुआ है। इसी तरह लाभान्वित किसान राजकुमारी का कहना है कि आवारा पशुओं व जंगली जानवरों के आतंक के कारण जमीन को बंजर छोड़ दिया था, लेकिन अब HP शिवा परियोजना के माध्यम से जापानी फल के पौधे रोपित होने और बाड़बंदी के कारण उन्हें पारंपरिक फसलों का भी लाभ मिलने लगा है और भविष्य में जापानी फल उनकी आर्थिकी को मजबूत करेगा। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
5: तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, आप में क्या गुण है?
6: दीदी हम संगीत सीखते हैं, दीदी गाना गाते हैं, दीदी वही सीख रहे हैं संगीत।
5: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
6: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन
5: जी,
6: पांचवीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर पांचवीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
5: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी?
6: जी दीदी।
5: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
6: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
5: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
6: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
5: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
6: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है,
5: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
6: जी दीदी।
5: अच्छा तो आप बता रही हैं भारती की आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
6: जी दीदी।

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है,
1: जी दीदी,
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज
1: जी
0: आप
1: दीदी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
1: जी
0: इसमें क्या मेरी खता है।
1: जी
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है, तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत
1: इतनी
0: बहुत
1: भैया,
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव, ग्वालियर
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के लिए
1: सुनना
0: आप क्या
1: पसंद
0: करती हैं शारदा जी?
1: हमें, आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम?
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती है मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: रही हूँ जयपुर से। युथिका
1: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
0: नागर।
1: युथिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
0: मेरे नाम का मतलब होता है जूही। जूही
1: जूही।
0: एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना
1: हाँ
0: जूही
1: जी,
0: का,
1: जूही का फूल
0: वो।
1: बहुत सुंदर होता है।
0: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
1: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
0: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए हुए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे,
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा। और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
1: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
0: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं, आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
1: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
1: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
0: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
1: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
0: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
1: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही, उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूँ कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, मतलब लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, वही सीखा है। मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
1: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
0: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
1: तो
0: वो गाना
1: बताइए
0: है
1: आपकी पसंद
0: महल
1: कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
0: फिल्म का गाना है, आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा।
1: बहुत खूबसूरत गाया आपने, और आपको सुनवा रहे हैं महल फिल्म का गीत आपकी पसंद पर।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका
1: हाँ,
0: किस तरह गुजरता है?
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते हैं।
0: काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ जी
0: खाना बनाना ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है?
1: मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना ज़रूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज़्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम, मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम।
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन
1: थैंक
0: फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको अपने
1: जी
0: रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भूनकर। जी
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बनाती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम, जी
0: मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं
1: मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी मैम,
0: करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह
1: जी
0: का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहती हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ।
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती
0: तो जो कहानियां आती हैं वो
1: है।
0: आपको प्रेरित करती हैं। और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद
1: हाँ
0: में और कौन से
1: वैसे
0: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: इसीलिए
0: हैं?
1: हम दोनों ही हैं।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ
0: तो
1: हम
0: आज आप,
1: दोनों ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ और वो नहीं वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंद
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी, अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप। रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहाँ काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है, जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। और वे सखियाँ जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है, वे निराश ना हो, आप ज़रूर कोशिश करती रहिए। क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें। इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-2462। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। इस समय साय के 4 बजे हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे हैं।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसके आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

यह गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन यह बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा

बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपये बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवर टाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं, आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज़ टिफ़िन लेकर आऊँगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ़ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई

आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे, आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी, रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही न्यौछावर कर दिया।

एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

0: संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said during the meeting they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
1: Meanwhile, spokesperson of CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
3: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed this today while talking to the reporters at the Parliament premises. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of the students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth line of Bellary Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. The project is planned on PM Gati Shakti National Master Plan with a focus on enhancing multimodal connectivity and logistic efficiency. It will provide seamless connectivity for movement of people, goods and services. The project will cover three districts across Karnataka and Andhra Pradesh. The Cabinet has also approved Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country. The scheme will have a total financial outlay of 3,030 crore rupees.
4: Andhra aur Karnataka ko jodne wale.
5: The cabinet has approved the third and fourth railway lines on the important economic corridor connecting Andhra Pradesh and Karnataka. Secondly, a new scheme has been approved to develop India's chemical sector in an entirely new way. Like semiconductors, the chemical industry is a foundational industry, so it was very important to adopt a new approach for its development.
4: Isliye bahut important tha is industry ke liye ek naye tarike se sochna.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वंदना रैना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे और लाइफ में एकदम दिलवाले बनकर जी रहे होंगे। दोस्तों, आज युवा मंच के इस खास एपिसोड यानी कि फिल्मी फ्राइडे में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सिनेमाघरों में रोमांस और एक्शन का ऐसा तड़का लगाया कि लोग आज भी इस फिल्म के दीवाने हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2015 में आई सुपरहिट फिल्म दिलवाले की। तो चलिए रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अगले 30 मिनट तक हम इसी फिल्म के शानदार सफर पर आपके साथ चलने वाले हैं।

चलिए श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं कि फिल्म दिलवाले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको बताएंगे अब हम। फिल्म का सबसे मशहूर गाना था गेरुआ, जो कि बॉलीवुड के सबसे महंगे गानों में से एक माना जाता है, और इस गाने की शूटिंग आइसलैंड की बेहद खूबसूरत और ठंडी लोकेशंस पर हुई थी। इस फिल्म में काजोल का किरदार सिर्फ एक सीधी सादी लड़की का नहीं था, बल्कि वह फिल्म में एक हिस्से में एक गैंगस्टर की बेटी और खुद भी एक्शन अवतार में इस फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना और कबीर बेदी ने अपनी 42 साल पुरानी फिल्म कच्चे धागे के क्लाइमेक्स सीन को दोबारा रिक्रिएट किया था, और ये कच्चे धागे फिल्म आई थी साल 1973 में, जिसमें दोनों एक दूसरे पर बंदूक तानते हुए दिखाई देते हैं। दिलवाले फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के घुटने में चोट लगी थी, और उन्हें रिकवर करने में मदद के लिए निर्देशक रोहित शेट्टी ने उन्हें एक साइकिल गिफ्ट की थी, जिसे शाहरुख अक्सर सेट पर

0: चलाया करते थे। इस फिल्म में अभिनय किया विनोद खन्ना ने भी, और अभिनेता विनोद खन्ना का निधन अप्रैल 2017 में हुआ था और ये फिल्म उनके जीवन काल में रिलीज हुई आखिरी बड़ी फिल्मों में से एक थी। साल 2015 में आई फिल्म दिलवाले का निर्देशन किया रोहित शेट्टी ने, जो अपनी शानदार और एक्शन से भरपूर गाड़ियों वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के साथ दिसंबर 2015 में एक दूसरे को टक्कर दी थी।
1: Favorite Nexa car with exclusive benefits. Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
2: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
2: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
0: जी श्रोताओं, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज है फिल्मी फ्राइडे। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं फिल्म दिलवाले का, जो साल 2015 में आई थी। और अब बात करते हैं इस फिल्म की फ्रेश जोड़ी की, जो है वरुण धवन और कृति सेनन की। वरुण धवन का वो वीर वाला किरदार चुलबुला, थोड़ा सा नॉटी लेकिन भाई के लिए जान देने वाला, और कृति सेनन की सादगी। तो अब सुनवाते हैं इस फिल्म का वो गीत जो उस समय हर शादी पार्टी और फंक्शंस की जान था, जिस पर सब थिरकते थे। तो चलिए उसी यूथ वाइब को दोबारा महसूस करते हैं और सुनते हैं ये धमाकेदार ट्रैक इसी फिल्म से।

कार्यक्रम युवा मंच में आज है फिल्मी फ्राइडे और दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म दिलवाले की जो रिलीज हुई 2015 में। जी ये तो हमने आपको बता दिया कि दिलवाले फिल्म का निर्देशन किया रोहित शेट्टी ने और उनकी फिल्म हो और गाड़ियां हवा में न उड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही जो कॉमेडी का तड़का था इस फिल्म में वो जॉनी लीवर का मनी भाई का किरदार, संजय मिश्रा और बोमन ईरानी की कॉमेडी, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बना दिया था। दिलवाले फिल्म के सभी गीत लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया प्रीतम ने। इसके साथ ही इस फिल्म में सह कलाकार की भूमिका में थे विनोद खन्ना, वरुण शर्मा, कबीर बेदी और मुकेश तिवारी। जी दोस्तों इस फिल्म का वो इमोशनल टर्न तो आप सबको याद ही होगा जब काली यानी कि शाहरुख खान का पास्ट सबके सामने आता है। प्यार में मिला वो धोखा और फिर सालों बाद उसी नफरत का दोबारा प्यार में बदलना, फिल्म हमें यही सिखाती है। चाहे गलत फहमियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्यार सच्चा है तो वो हर दीवार को तोड़ देता है। और हमारा आज का यूथ भी रिश्तों में इसी लॉयल्टी, इसी पैशन को ढूंढता है। मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना है, यही दिलवाले फिल्म का मैसेज है। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म का वो आइकॉनिक गाना जो सीधे दिल को छू जाता है, अरिजीत सिंह की आवाज में। और उनका साथ दिया है अंतरा मित्रा ने।

दोस्तों, आज का युवा मंच कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिल्म दिलवाले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि प्यार और उम्मीदों का बेहतरीन मिश्रण है, और उम्मीद है आपको फिल्म दिलवाले के इन पन्नों को मेरे साथ पलटने में खूब मज़ा आया होगा। तो चलते चलते बस यही कहेंगे कि लाइफ में मुश्किलें कितनी भी आएं, अपने अंदर के दिलवाले को कभी मरने मत देना, प्यार बांटते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुरेंद्र कपूर से। और अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट वंदना रैना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। सुनते रहिए युवाओं की धड़कन युवा मंच सिर्फ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बाय बाय, टेक केयर। और कार्यक्रम का एक और गीत चलते चलते अपने सभी श्रोताओं की नज़र।

कार्यक्रम युवा मंच आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजां गराइंदियां। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर। और कार्यक्रम खेती बाड़ी हम आपके लिए प्रसारित करेंगे शाम 7:10 पर। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। और देशकान सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे रात्रि 9:15 पर। और इस कार्यक्रम में आज साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कयामत के नगमे हम आपको सुनवाएंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम कारवां सुरों का। और रात 10:00 मॉनसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद शाम 6:00 शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से। और समाचार संध्या 8:45 पर न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगे। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सुबह 6:05 पर। और 6:40 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम सुबह सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे कल प्रातः 7:10 पर। और लोकगीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम शुभ प्रयाग में समय है कल सुबह 7:40। गाने सुहाने ये कार्यक्रम सुनिएगा कल प्रातः 8:30 पर। और कल सुबह 9:00 प्रसारित किया जाएगा गीतांजलि कार्यक्रम। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि शाम 6:00 आकाशवाणी

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और हम आपसे जो चर्चा आज
0: इस बीच प्रतिनिधि मंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। लाहौल स्पीति जिला में उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कुडूनाला के समीप पहाड़ी से अचानक गिरी चट्टान की चपेट में आने से एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस घटना में वाहन चालक बीर सिंह घायल हुआ है। ये वाहन कुल्लू से पांगी जा रहा था। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति और पांगी की सीमा पर स्थित उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कड़ूनाला के पास पहाड़ी से भारी चट्टाने और मलबा गिरने से कुल्लू से पांगी जा रही सुमो टैक्सी उसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि मार्ग एक दिन पहले बंद होने के कारण सभी यात्री तिंदी में रुके हुए थे। शुक्रवार को सड़क खुलने के बाद वे पांगी के लिए रवाना हुए, लेकिन कड़ूनाला के पास ये दुखद हादसा हो गया। लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला ने हादसे में अभी तक 13 लोगों के मरने की पुष्टि की है। पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही में जुटे हुए हैं। इस घटना के पूरे लाहौल और पांगी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उपायुक्त लाहौल स्पीति को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को बेहतरीन इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। नशा मुक्त समाज और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वच्छ जीवन अपनाने का संदेश दिया। युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
3: नशा मुक्त युवा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया नाहन में। युवा के लिए देश है कि नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो नशा है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारा विकास नहीं करता, हमें बर्बादी की राह पे ले जाता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स है उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ओवरडोज हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है। हमारा यूथ हेल्दी और स्ट्रांग रहेगा तो हमारा जिला हेल्दी और स्ट्रांग रहेगा।
0: हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा 11 जुलाई को कांगड़ा जिला के बनखंडी से शुरू हुई, जो 26 जुलाई को शिमला में समाप्त होगी। संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम हिमाचल के शिक्षा ढांचे को खराब करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और जेबीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति भी जल्द की जानी चाहिए। रमेश शर्मा ने कहा कि इन मांगों को लेकर 26 जुलाई को शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
4: प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा 11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी माता के मंदिर से प्रारंभ हुई थी। मुख्य मुद्दा जो है न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है। हर व्यक्ति जो है इस सिस्टम से नाखुश है, तो इसका मतलब ये प्राथमिक शिक्षा का तो बेड़ा गर्क करेगा ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के ढांचे को भी पूरी तरह से तहस नहस करेगा। 26 जुलाई को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है जिसका आयोजन है।
0: सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को एक माह के भीतर अपना ई केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत के साथ फिल्म अनामिका से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
4: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
5: सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नया दौर फिल्म से ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में।

लीजिए अब सुनिए प्यासा फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार हैं एस टी वर्मन।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सांवरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
4: मुकेश और कंचन की आवाजों में लीजिए सुनिए धर्मात्मा फिल्म से ये गीत।

सुरमई सांझ ही कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 6:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे श्रोतियां दा स्वागत है हंदे अज इस कार्यक्रम विच कने अज टियाले पर पुजी हुआ शन्नो ताई कने मिंजो पहचान चलियो पंचोरा
1: जी जी जी आई गए मैं भी आई गए पहुंची गया टियाले पर कने कार्यक्रम सुना करदे सारे साढ़े किसान भाई बागवान भाई इन्हां सारियां जो पंच दी तरफा ते भी राम राम
0: जी तां दिखा हां दुनी दा राम सलाम दा सारिया मंजूर करी लिया है
1: जी
0: कने टियाले पर हां सही समय पर पुजी पैन पता नहीं होता बरखा का अजकल कदू छिट्टे पे आने ना
1: बिल्कुल। और सन ताई जी अज दिखा तो हाँ मौसम जड़ा से बड़ा अच्छा रहा, काफ़ी दिन बाद जी से धुप खिली है ना,
0: जी
1: और इस धुप का जड़ा से साढ़े किसान भाई हैं आनंद भी लिया होना और कन्ने कन्ने फायदा भी जरूर लिया होना है ना,
0: बिल्कुल
1: जेडे तिना दे खेतीबाड़ी दे काम कार जेडे कि काफ़ी दिन ते छुट्टे होने ने सह भी तिना जेडे से अच्छे तरीके ने निपटाई लिया होना, कन्ने कन्ने तिना दा जेड़ा पशुधन दा भी काम होंदा गा पत्रा बढ़ना होंदा है ना जी, तो सह भी जेड़ा से तिना समय पर जेड़ा से अज मजे बड़े मजे ने करी लिया होना
0: करी लिया होना। कहीं दिखा मैं तो आँदी आँदी चलू बत्ता चली हुई ना,
1: हाँ जी
0: तो मैं देखा भी धुप्पा जरा चमकारा लगे था सारे ही माड़ा मोटा अपने सुख सकैन भी करी ले।
1: हाँ ये भी गल जरूर थी
0: जी कने दिखा हूँ चलना हाँ जानकारी की तरफ कजो कि अहां दी गल्लां तां मुकनियां नहीं,
1: जी
0: तो अज जिहड़ी जानकारी अहां अपने श्रोतियां ने अपने किसानों ने सांझी करनी है सह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
1: जी
0: कजो कि कई बार दिखा हाँ हिमाचल की गल करिए तो पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार फसल मतलब बरखा के कारण या सही उत्पादन नहीं हो पाता,
1: हाँ जी
0: या तो कुछ ऐसे इलाके जितू बरखा नहीं होती तभी से अहां के किसान कुछ फसलों से वंचित रह जाते,
1: जी जी
0: तो इस गल्ला अहां चाहते भी किसान खेतीबाड़ी सौगी सौगी और भी कम करते रहन।
1: बिल्कुल
0: तो इसते क्यों होना कि तुम्हें तो एक ही पहां जे कोई बोल देना घाटा वाधा हो ही जाएगा ना,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: दुए पहां से पूरा हो जाना।
1: बिल्कुल। और साढ़ा जिहड़ा है हिमाचल प्रदेश है एक पहाड़ी प्रदेश, और इत्थों भी जिहड़े साढ़े जिहड़े

0: आप ताई ले सकते जल है जो सारी जानकारी ऊ है
1: हाँ जी
0: तो बिल्कुल इसा जानकारी दा यही है कि भई जरूरी नहीं है मछली पालन जी हंगला दे छोटे स्तर पर होंदा कुछ मछुआरे ऐसे न से बड़े स्तर पर भी काम कर दे
1: जी जी
0: से मछली पकड़ने का काम कर दे तो कई बारी कई कोई दुर्घटना भी हो जाती है कई कुछ हो जाता
1: हाँ जी
0: तो सरकार आती का भी प्रावधान कितने होंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस दे कन्ने कन्ने सारे प्रदेश बिच दिखा तो हाँ बड़े बड़े जलाशय भी हैं, है ना,
0: जी
1: कई बड़े बड़े डैम भी बने, और जी कि साड़ा पोंग डैम है या फिर नंगल डैम है परे, है ना जी।
0: जी जी
1: तो इन बड़े बड़े और भी कई डैम ने तीन बड़े बड़े जलाशय जिड़े से मछलियाँ जड़ी से पाली जाती हैं ना। और अजकल तो बरसात दे दिन पर अजकल थोड़ा जड़ा से मछली दे प्रजनन का जड़ा समय चले आता था कुछ टाइम
0: आजकल
1: तक
0: पकड़ पर पाबंदी है
1: पाबंदी होती है।
0: बिल्कुल कर जी है तो दिखा ट्राउट दी गल की अहां दे अगर कोई किसान साथी मछली पालन करना चाहते हैं ठंडे इलाके बिच
1: हाँ
0: कने
1: जी
0: खास कर से ट्राउट मच्छी दा पालन करना चाहते हैं तो इस वास्ते कंक्रीट दे विशेष टैंक बनाए जाते
1: अच्छा जी
0: तो तीस तीय भी सरकार मदद दिंदी है। गल करिए अनुदान दी तो जड़ा सामान्य वर्ग है तिना जो मछली उत्पादन से संबंधित कोई भी काम करना तिना
1: हाँ
0: चाहे
1: जी
0: तिना तालाब बनाना है किश्तियां लैनिया न जाल लैने न
1: जी जी
0: या तिना जी अगला भी कंक्रीट टैंक बनाना है तो तिना 40% सब्सिडी कने जेडे अहां दे और भाई बहन अनुसूचित जाति जनजाति इन वर्गों ते हैं तिन्हें 60% अनुदान दे दी सरकार।
1: जी बड़ी अच्छी गल है। साढ़े जेड़े सामान्य ने या फिर साढ़े अन्य जेड़ी अहां दी जातियां तिना वास्ते जेड़े से लगभग सारे लोगों वास्ते जेड़े से सब्सिडी दा प्रावधान जेड़े से इस बीच है ना जी।
0: जी
1: और कन्ने ही अगर अहां आवेदन करना चाहते हैं तो अपने जेड़े
0: नजदीकी
1: नज़दीकी
0: कोई भी
1: दे
0: हाँ जी
1: जिला मत्स्य अधिकारी ने तिना कन्ने संपर्क करी के अपने जेड़े कागज़ वगैरह ले जाई करी उत्थू जेड़े से आवेदन करी सकते हैं।
0: कन्या सही कागज होंगे मुख्य जड़े हर योजना विच लगते न
1: बिल्कुल
0: आधार कार्ड होई या फोटो होई या अपनी बैंक पासबुक होई
1: मोबाइल नंबर हुई
0: कन्या
1: है
0: अगर तुहां कोई मछली पकड़ने दे या पालन संबंधी कोई तुहां कोई कागज पत्र है
1: हाँ
0: तो सह
1: जी
0: भी तुहां जरूर लिया ताकि तुहां अनुदान पूरा प्राप्त कर सकन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो दिखा जानकारी है कन्या मैं बोलती अहां ते ज्यादा जानकारी अहां दे किसान विभाग विच जाई कर ले सकदे
1: हाँ जी
0: नजदीक हां जो पालमपुर भी है कने अहां दे जिथु भी जिले बिच नेड़े कोई मत्स्य संबंधी विभाग है तिथु भी जाए कि सब पूरी इस गल्ला दी पूछ मंग करी सकदे तो
1: जी जी जी
0: इस ते बाद पंच जी गल्ला बातें भी चलदियां रहनियां कने थोड़ा देया हाँ बोलदे पे अपने इथु रौनक भी लगानी हुंदी
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: रौनक ते पहले कुछ सनेहन ते ना सुनी लैंदे।
1: जरूर जी
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: जी पंच जी दिखा बोलिया तिया सारे जहान ने तोरिया ना
1: हाँ जी
0: गल सच है दिखा तिया कोई नहीं रखदा करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस लोक गीत के बाद हाँ फिर तो हूँ गलबात की तरफ चलना। और अजकल दिखा किसान भाइयों बरसात का मौसम चलिया, और बरसात के मौसम च हाँ जो अपने खान पान का भी जोड़ा ऐसा विशेष ध्यान जोड़ा ऐसा रखना पौंदा है ना।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: बरसात का मौसम है, इस विच बारिश के मौसम च जोड़ा ऐसा नमी जी है बधी आती है, इस विच सूक्ष्म जीव के पनपने का जोड़ा ऐसा
0: ज्यादा
1: अनुकूल
0: जी
1: परिस्थितियां बनी रहती है ना।
0: जी
1: तो इस वास्ते हाँ जो पानी तो होने वाली बीमारियां तो खतरा भी बढ़ी जाता, और खाने पीने दी जिनी चीज़ां न तिना जो जड़ा से अच्छी तरह हाँ जांची परखी के ही तिसदा उपयोग जड़ा से करना
0: करना
1: चाहिए है
0: चाहिए
1: ना।
0: कने जालू भी मौका लगे मौसम साफ हो है तो जी अपने बिस्तरे होई है अपने कोई घरे दा और कोई कपड़ा लत्ता हो है से जरूर सुकाई लेना का जो कि तुहां गला दे जी ठीक भई नमी अजकल बनी
1: हाँ जी हाँ
0: आंदी
1: जी
0: तो इस कारण क्यों होंदा नमी बिच ही कुछ ऐसी चीजां पनपी पौंदी जड़ियां हादियां आखी ने भी असा यूं नींद उसदियां।
1: बिल्कुल। और इसके कन्ने कन्ने हाँ जो खाने पीने का भी विशेष ध्यान जोड़ा से रखना चाहिए। और अजकल तो साढ़े किसानों के घर है जोड़े से तरह तरह की सब्जी जी से उपलब्ध, जी कि लौकी है, करेला है, टिंडा है, ये कुछ एक भिंडी है, अदरक, हल्दी, इन्हों सारिया चीज़ों जी मौसम के आधार पर जी साढ़े वाल साढ़े खेतर च हैं
0: जी
1: तिना का ही उपयोग जोड़ा से साझो करना चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार अगर हाँ खाने पीने का ध्यान रखिए तो इससे जोड़ा सह चीज़ा साझो खराब नहीं लगदिया है
0: नहीं
1: ना।
0: लगनी जी
1: और कन्ने ही ये जी सब्जियां या फल कटे फटे जड़े से नहीं होने चाहिए, क्योंकि कटे फटे जड़े फल सब्जियां होंगे तिना च संक्रमण लगने दे ज़्यादा तिस्ते बीमारियां फैलदियां है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: कने दिखा पीछे दी अखबारां च भी पढ़ा दे फोना च भी दिखा दे भई जेड़ा है पीलिया रोग है ये बड़ा एक आम दे होई इन्हें दिनों च
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: ते ज्यादातर इसका कारण यही है भी जड़ा दूषित बरसाती का अजकल पानी होंगे ना
1: हाँ जी
0: सह मेरे हिसाब ना मुख्य कारण है कने कोशिश करा भी घर जो हाँ जालू भी अहां दी पैणा या कोई भी रोटी रसोई लगदी है ना
1: हाँ जी हाँ
0: तो मैं
1: जी
0: बोलदी पे घर थोड़ा दे पानी जरूर सह एक भड्डू वाली रखा।
1: हाँ ये बड़ी अच्छी गल सानू ताई तुहां दसी कि अहां जो जेड़ा से उबलिया ही पानी जेड़ा से इन्हां दिनां च पीना
0: पीना
1: चाहिदा,
0: चाहिदा
1: क्योंकि साढ़े जेड़े बाईं या फिर साढ़े नलकियां च कई बार क्या मटमैला पानी आवा करदा, तो
0: अजकल हाँ जी
1: तिसते जेड़ा से बचाव हाँ अपना रखना, और तिसदा उबाली के ही उपयोग करिए तो साझो और साढ़े स्वास्थ्य वास्ते से ठीक होना है
0: ठीक
1: ना।
0: होना जी
1: और कन्ने कन्ने अजकल जी गर्मी भी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि बरसात के मौसम च उमस भी रहती है, इस वास्ते हाँ जो अपने शरीर च पानी की कमी जड़ी से
0: नहीं होना
1: नहीं
0: देनी
1: होना
0: जी
1: देनी, और समय समय पर पानी का उपयोग जड़ा से करना चाहिए, और जड़े खाना है इसका भी जड़ा से खास सावधान रखना, बासी खाना नहीं खाना, ताज़ा ही खाना जड़ा से हाँ उपयोग च लाना है ना।
0: वैसे तो दिखा हर वक्त ही तुह जी गल दसा दे सारिया मतलब दिमाग च रखने वाली ने
1: जी
0: पर
1: जी
0: कई बार कुछ मौसम आते वे इस बच्चे संजा प्याग की चीज़ हाँ वरती लैन तो
1: हाँ
0: उतना फर्क
1: हाँ
0: नहीं पाँगा
1: जी
0: पर यह जरा बरसात होंगी 100 व्याधी 100 बीमारियां लेकर ही आँगी
1: बिल्कुल
0: तो इस बच्चे हाँ मैं बोलती छोटी छोटिया गलों का ध्यान रखना पौंदा ये नहीं पे इच्छा चलो खाने बनाने की गल नहीं है होर भी कोई चीज़ चुकनी है तुहां बाहर रखी हो तो सभी बड़ी सावधानियां ने चुकनी
1: जी
0: अजकल तुहां दिखा होना पे जी या कोई तुहां कपड़ा कोई बोरी कुछ भी रखी हो तीसरे तुहां चुका दी सेठ मकौड़ियां का टोरू लग्या
1: हाँ
0: तो जरूरी नहीं होंगे कि ये मकौड़ियां ये चीज़ा हुई कोई मिठे दी होंदियां
1: जी जी
0: ये कुछ नमियां के कारण भी छोटे छोटे जीव कीट पतंगे जड़े होंगे
1: हाँ जी
0: सह आदि ही चीज़ों के हेठ लुकी छुपी रेंदे
1: बिल्कुल
0: कहना हाँ जी बाल बच्चे हैं कोई छोटा कोई कितना दा खंदोलू है कपड़ा है कोई फालड़ू है तो सह चीज़ा तुम जल चुकते हैं या कुछ बच्चे भेज देने चुकने वास्ती तो जरूर तेने चाड़ी के घेरी फेरी के दिखा
1: बिल्कुल बड़ी अच्छी गल हाँ जी कि सावधानी हाँ जरूर अपनानी है, क्योंकि इन्हों दिनों च जेड़े से कई तरह के जीव कीड़ू कंडू जेड़े से सांझो नुकसान
0: हाँ
1: पहुंचाई
0: बिल्कुल
1: सकते।
0: ओडे छुपी रहेंदे कने इसते भी यहाँ कई बारी हाँ नुकसान मतलब होंदा कने ये छोटी छोटिया गल्लां नहीं ना यहाँ अपने हिसाबे ने मैं बोलती 21 दिन की गल नहीं है बरसात बड़ी बड़ी लंबी होंगी
1: जी
0: तो बिल्कुल ध्यान रखना भी अज करीता कने कल नहीं किता तो कोई फायदा नहीं
1: हाँ तो जी सनुताई जी साढ़े गलबात जड़ी से लगातार जारी रहनी है,
0: जी
1: पर हूँ हाँ फिर ते संदेश और उसके बाद लोग गीत जड़े से सुन देन।
0: बिल्कुल
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट जल्दी कीजिए कीमतें जल्द बढ़ने वाली है आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम नियम एवं शर्त लागू
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa. Yeah.

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी किसान साथी तुहां सुना दे कार्यक्रम मौजां ग्राएं दिया कने कार्यक्रम विच आज ट्याले पर बैठी हो शन्नो ताई कने मिंजो सोगी बैठी हो पंच भाई
4: जी
3: तदे का हाँ गल लगातार करा दे बीच बीच मनोरंजन भी करा दे
4: हाँ जी
3: पर कई बारी हाँ दे कुछ श्रोते होंदे कम्मा कारा विच व्यस्त होंदे कने हाँ दे कार्यक्रम जो सै देरी ने सुनना शुरू कर दे
4: हाँ जी
3: तो इस कारण ते ने दसना पौंदा पे पंचायती कोरम आंदे कई गल्लां तां बड़ा कुछ नवां सिखणे मिलदा कई कुछ सुनणे मिलदा अजकल दिखा भई आहां दे किसान खेती बाड़ी विच बड़ी बारी मेहनत करा दे पर कई बारी कुछ किसान बोलते भी आहे इतना फायदा नहीं होया ये कई बोला दे जी फलाना हथनिक मुंदा होना है फलाने रोग लगी पे फलाने दुख बीमारियां
4: जी जी
3: तो मैं तो समझदी भई सारा जेड़ा नचोड़ है ना गल्ला दा ए है पे हां दी जेड़ी जमीन विच फसल सब्जी उगा दी ना
4: जी
3: तित्तु ते ही कुछ ना कुछ कमी है
4: बिल्कुल और कने कने हाँ जो भी जेड़ी से अपने जेड़े फसल है अपने खेतर ने तित्तु जेड़ी से चक्कर लगाना चाहिए और दिखना चाहिए कि कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती कोई बीमारी तो नहीं लगी आदि या कुछ और वजह ने कोई सारा उत्पादन घटा करता है ना
3: बिल्कुल वजह कुछ भी हो सकती जालू अपू जांगे दिख गए तभी पता लगी आंदा
4: जी
3: कने जेड़ा कुछ वक्त पहले हाँ थोड़ा दिया बड़े कीटनाशक बड़िया जहरीलियां दवाई तरफ चली पै ना
4: हाँ
3: इसने उत्पादन विच तां पवां बेशक फर्क पेऊंगा पर हाँ इतने रोग भी मैं बोलती हाँ अपने कन्ने लाई लै
4: बिल्कुल उत्पादन च तो वाधा होया पर कन्ने कन्ने कई नुकसान भी सांझो जेड़े से दिखने मिले हैं
3: बिल्कुल तो हाँ जेड़ा गल करा दे या तुहां इशारा समझा दे से जैविक खेती दे फायदे
4: हाँ
3: तो जैविक खेती दी तरफ हाँ वैसे बड़ी चुके हाँ दे किसान ज्यादातर पर फिर भी यहाँ कई बारी सोचते पे चलो इबे थोड़ी देर लगायो चार सगाड़ू ते तू कीटनाशक पाई दे या कोई और ही रसायनिक खाद पाई दे तिस्ते क्या होना भी फटाफट से कीट पतंगे भी मरी जाने
4: जी
3: कने यहाँ की फसल भी दुगनी हुई जानी
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: तो तिस्ते क्या होंगे सह साग सब्जियां तो लगी पौंदियां कने जालू हाँ रोज ही रसोई विच सही बरतनिया न तो तिस्ते ही यहाँ दे सीधा स्वास्थ्य विच प्रभाव पौंदा तो हाँ सारे यही गलांदे बार बार ट्याले ते भई तुहां कोशिश करा थोड़ी देर पहल करा भी जैविक खेती की तरफ बधने की इसते क्या होना तुहां हमेशा गां उत्पादन विच भी फायदा होना कने तुहां जो जेहड़ा स्वास्थ्य लाभ है सह भी होना ही होना
4: जी तसन्नताई जी इसी कन्ने हुन फ्री दे कार्यक्रम दे अंत च इक होर प्यारा दे लोक जेहड़े शामिल कर दे
3: जी

0: जी किसान साथियों, कार्यक्रम का समय संपन्न होता जाते जाते दसीं दे कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह कने तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा। हुण असा दुनी जो दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा कराइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for a strong action in cases of paper leaks will be introduced in Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
7: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
6: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of the demands.
8: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
6: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants the same and there should be no obstruction to the passage of the bill. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Ballari Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country.
9: The Cabinet has approved the third and fourth railway lines on the important economic corridor connecting Andhra Pradesh and Karnataka. Secondly, a new scheme has been approved to develop India's chemical sector in an entirely new way. Like semiconductors, the chemical industry is a foundational industry, so it was very important to adopt a new approach for its development.
10: This is very important for this industry to think in a new way.
6: Bhavya Rasayan scheme will have a total financial outlay of 3,030 crore rupees. The scheme would run for a period of 5 years from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said centre will provide a grant of up to 1,000 crore rupees per park. This will be subject to minimum contribution of 500 crore rupees by the concerned state government. New Delhi today said that Indus Waters Treaty remains in abeyance until Islamabad abjures support for cross-border terrorism. Briefing media New Delhi spokesperson and the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, dismissed the Pakistan media reports that India is deliberately causing flooding in the neighbouring country. He added that the recent increase in flows in the river Chenab is a direct consequence of intense monsoon rainfall over Jammu and adjoining catchment areas during this week. In the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Nataraj advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. The semi-finals would be held tonight. Earlier, Ravi Veera Venkat Bodigina and Ali Imam qualified for the final of the men's S1300-meter freestyle para swimming event. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही श्रोतें दा एक बारी फिरी ते ट्याले पर स्वागत है। और मेरे कन्ने ने सन्ने उताई जी थोड़ा भी ट्याले पर एक बारी फिरी ते स्वागत है।
1: जी पंच जी, तुहें भी राम राम कने। जितने भी श्रोते कार्यक्रम सुना दे न, किसान साथी हैं चाहे कोई भी हैं,
0: जी
1: कजो कि हाँ जड़ा एक कार्यक्रम है ना, इसे सारा ही मतलब हर कोई सुनता, चाहे सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, चाहे और कोई है ना, बाहर दे भी लोग बड़े पसंद कर दे।
0: हाँ
1: कन्ने
0: जी
1: हाँ बड़ी खुशी होंगी भी जालू, कई बार देखा कुछ कार्यक्रमों में फोन भी आते ना,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: तिस भी जरूर हाँ कार्यक्रम का जिक्र होंगे।
0: बिल्कुल। और जिक्र भी होता और से बोलते कि हाँ बड़े चाव कने सुनते भी ने और आनंद भी जेड़ा ऐसे लोग गीत लेंदे हैं ना।
1: जी तो दिखा खेतीबाड़ी कार्यक्रम विच हाँ एक बार फिर से स्वागत करना है सारे श्रोतें, किसान बागवान भाई भैनों का। कने आज फिर यहाँ जानकारियां भी तुहां तक पजानियां न,
0: जी
1: लोकगीत भी पजाने न। कने सब ते पहले दिखा किसान साथी जालू अपना खेतीबाड़ी का काम तो करते ही न,
0: हाँ
1: आह
0: जी
1: पहले भी गल की भी सौगी सौगी से कुछ और काम भी चेड़ी पान, तो इस विच क्या होंगे तिना की आमदनी तो बढ़ती बढ़ती। कने कई बारी नफा नुकसान इक्की कमे च होया हुआ है तो सिद्धू विच पूरा हो जाता।
0: बिल्कुल। सन्नू ताई जी तुम ठीक गला दे हाँ जो खेतीबाड़ी दे काम कार दे कन्ने कन्ने और भी कई सारे काम कार जेड़े इनसे करी सकते हैं और साढ़े किसान भाई कर दे भी हैं।
1: जी
0: और खासकर अहाँ दे पशुधन द गल है अहाँ दी खेती जिहड़ी इसे पशुधन पर ही जिहड़ी इसे निर्भर होंदी है ना।
1: बिल्कुल जी
0: क्योंकि अहाँ जैविक खेती की गल करते हैं प्राकृतिक खेती की गल करते हैं तो ये सारिया ही चीज़ें ताई संभव न अगर अहाँ अपने पशुधन पाल करते हैं अपने गायें पालते हैं मेही पालते देसी नस्ल दियाँ या फिर बकरियां या भेड़ा पालते हैं ताई जोड़ा सा सड़ा खेतीबाड़ी का काम भी जोड़ा सा चलता है ना।
1: जी कने दिखा डेयरी दी गल करा, चाहे मिश्रित खेती दी गल करा, अहाँ दा हिमाचल जेड़ा एक पहाड़ी कने मैदानी क्षेत्रां दे साबे ने मिला जुला है,
0: हाँ जी
1: तो इस विच क्या सुरक्षित कने सब ते वधिया काम है भी, हाँ दुनियो किट्ठे किट्ठे करन ना, तो
0: जी
1: इस ते हाँ दूरा मुनाफा कमाई सकदे।
0: बिल्कुल। और अहाँ जो साढ़े किसान भाई करते भी हैं और इस वास्ते अहाँ जो अगर अच्छे बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन का काम करना तो इस वास्ते तो अहाँ जो कुछ एक सावधानियाँ जड़ी से रखना जरूर पौंदियाँ ने जी कि सब ते पहले तो अच्छी नस्ल के जड़े से पशुधन जड़े से साढ़े वाल होना जरूरी है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल सही कहलाया।
0: जिस विच अहाँ दे जड़े दो ते पंज गाय कने भैंस दे अहाँ जड़ी इसे शुरुआत मत्स्य जड़े दुध उत्पादन जी इसकी कर सकते हैं। और इस विच अच्छी नस्ल दी गाय जड़े कि साहीवाल है गिर है HF जर्सी है होस्टन है ना जी इन्हें कुछ एक नस्लों का जड़े से अहाँ पाली सकते हो। कन्ने ही भैंस की गल करिए तो इस बिच भी कई तरह की जी नस्ल न खासकर मुर्रा किस्म की नस्ल जी से अच्छे दुध देने
1: मनी
0: वाली होंगी
1: जाती
0: है। हाँ
1: जी।
0: जी
1: कने दिखा अज जड़ा हाँ तुहाने विषय साझा कर दे न, इसका ना ये है वे मिश्रित खेती कने डेयरी उत्पादन की गल,
0: जी जी
1: एक किट्ठी मिठी गल हाँ ता करा देने कजो कि दूनी का इक्की दूए ने बड़ा अच्छा संबंध है।
0: हाँ
1: कने
0: जी
1: किसान साथियों पता है भी है वे दिखा इक्की कमे बिच अपना समय निकालना या जीवन यापन करना थोड़ा जहा मुश्किल हो जाता, तो जी मिश्रित खेती है इसका सीधा ही मतलब है भी इक्की जमीन पर फसलां भी उगानी है, कने सौगी सौगी पशु पालन मधुमक्खी पालन करा मुर्गी पालन करा या मछली पालन करा, कुछ भी जड़ा काम तुह अपने क्षेत्र के अनुसार करी सकते न, तिस कमे तुह जे रली मिली करगे तो तुहां दा से दो काम किट्ठे चली सकदे।
0: बिल्कुल। और साढ़ा जिहड़ा खेतीबाड़ी का कम होंदा सै मौसमी होंदा है ना। कुछ
1: बिल्कुल
0: समय तक हाँ जिहड़े सै खाली भी बैठते हैं तो उस समय जो हाँ जिहड़ा सै सदुपयोग करी
1: करी
0: सकते हैं
1: सकदे जी।
0: और भी जिहड़े सै छोटे मोटे धंधे हाँ करी सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो जी दिखा मौसमी तुह गल करे तो कई बार पहाड़ी क्षेत्र है मौसम की मार ज़्यादा पई जाती,
0: हाँ
1: कई बार बरसात ज़्यादा होने पर भी फसलों जो नुकसान हो जाता, कई बार बरखा नहीं होने पर भी फसलें नुकसान होता, तो इस वास्ते यहाँ के किसान दुध बेची करी भी अपना खर्च पानी कढ़ी सकते।
0: बिल्कुल। और कन्ने कन्ने हाँ जी गल कला करते हैं कि अच्छी नस्ल के पशु होने चाहिए कन्ने कन्ने ही जड़ी पशुशाला से भी अच्छी जड़ी इसे गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए हवादार होनी चाहिए साफ सुथरी होनी चाहिए और सुखी जड़ी इसे होनी चाहिए ताकि
1: जी
0: साढ़े पशु किसी प्रकार की जड़ी है बीमारी ना लगे और उन्हें सुविधा रहे है ना जी हरेक
1: जी
0: चीज़ की। कन्ने ही पानी पीने की भी व्यवस्था जी इसे होना चाहिए कि अच्छा स्वच्छ पानी जोड़ा से साढ़े पशुओं जो उपलब्ध हो सके और इसके कन्ने हरे चारे का भी प्रबंध कन्ने कन्ने साढ़े जोड़ा सूखा चारा है जिस बिच हाँ फसलों के जोड़े अवशेष होंगे घाह हो या बू हो या फिर और कई चीज़ा होंदिया ने इसके कन्ने कन्ने हरे चारे च नेपियर है मक्का है बरसीम है इन सारे चीज़ों का ही जेड़ा से उपलब्ध होना जरूरी है साढ़े किसान भाइयों वाल ता ही जेड़ा से अहां दे किसान भाई संतुलित और खनिज मिश्रण दे करी एक अच्छे दुध का उत्पादन जेड़ा से करी सकते हैं।
1: जी तो बिल्कुल तो हाँ किसान मित्र पंच जी तो हाँ बड़ा बढ़िया गला या
0: जी
1: पे दिखा गाय पाली होंगी तो मैं बोलती तिसदा हाँ फायदा खेतीबाड़ी ची हो जाना
0: हाँ जी
1: मुफ्ते दी खाद
0: जी
1: डेयरी के बाद जड़ा दिखा गोमूत्र गोबर कुछ भी होंगे सहां दे किसान सीधा ही बोलते इक्की पहां सह तेना गाय पालियाँ
0: जी
1: दुए पहां सह खेतीबाड़ी कराए तो तिथु ते सह गोहा कूड़ा जो भी है सह तिना दे खेतीबाड़ी बिच तिना फायदा दे दा
0: हाँ
1: जिस
0: जी
1: ते सह दिखा जैविक खाद बनाई सकते रसायनिक खाद बनाई सकते कने खर्च जड़ा होंदा सह बिल्कुल ही शून्य होंदा
0: बिल्कुल
1: कने जे चारे की गल करिए तो जड़ा हाँ जमीना पट्टीए ते फसलों के जड़े अवशेष निकलते चाहे छलियाँ हुई तिना डंठल हुई है घा पत्रा होइए तो सह अहां दे सीधा ही तिना डेयरी वाले पशुओं वास्ते सह बड़ा अच्छा चारा बनी सकदा
0: जी जी
1: कने अहां दे किसान साथी चाहन तो सह सरकार दियां जिहड़ियां योजना चलियां तिना ने भी सह जुड़ी करी कुछ ना कुछ फायदा ले सकदे ताकि तिना दे दोनों काम सह वधिया चलदे रहन कने अहां उम्मीद करनी है भी अहां दे किसान साथी सिर्फ खेतीबाड़ी तो सह चलो करा दे ने सौगी सौगी सह जरूर कुछ ना कुछ काम और भी छेड़न
0: जी तां इह तां थी जानकारी दुध उत्पादन और मिश्रित खेती दे बारे च।
1: जी
0: साड़ी
1: जी
0: गलबात जिहड़ी से लगातार जारी रहनी है, पर हुण हां सुनना एक प्यारा देया लोक गीत।
1: जी

0: जी तां अपने श्रोतिया अपने किसानां तक पजाया है बांका दिया लोक गीत
1: जी।
0: कने उम्मीद करनी है तिन्हां यो संझा दे बेले पसंद भी आया होना है।
1: हाँ जी
0: कने पंच जी हुण फिरी ते चलना है थोड़ा जिहा हाँ कम्मे दी गल्लां वखां है
1: बिल्कुल
0: तां जानकारी हाँ अपने सामने रखी ली होया तो मैं बोला दी सारे सुन तो इस गल्ला दा सह फायदा ले सकदे कजो कि बरसाती जिहड़ा सब्जी उत्पादन ते संबंधित गलबात हो ना
1: हाँ जी
0: से सारे ही फायदा दिंदी तो हाँ बिल्कुल भी देर नहीं करनी है कन्ने ही सुननी है जानकारी।
2: बरसात के मौसम में सब्जियों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी और इस संबंध में जानकारी देने हेतु जो है विशाल डोगरा जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत हैं। ये बताइए कि जब भी हमने सब्जियां लगानी होती हैं तो सब्जियां लगाने से पूर्व जो है हमें क्या कुछ जो है सावधानी लेनी चाहिए।
3: जिला कांगड़ा में या हमारे प्रदेश में सब्जियों के लिए हमारे मुख्यतः तीन मौसम है। एक मौसम सर्दियों का मौसम, दूसरा मौसम ग्रीष्मकाल की सब्जियों का मौसम और तीसरा मौसम बरसात का मौसम। तो हर मौसम की कुछ अपनी चुनौतियां हैं कुछ अपने फायदे हैं। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती होती है सिंचाई की। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा चुनौती होती है जो कम तापमान हमारे होते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं कीड़े मकोड़े हैं हमारी बीमारियाँ हैं और इसके अलावा जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो बरसात के पानी की निकासी सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों मुख्यतः जो सब्जियां हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं वही मौसम हम दोबारा से बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कई बार हमें किस्मों का चुनाव जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए हम टमाटर की खेती कर रहे हैं जब हम गर्मियों में इसकी खेती करते हैं तो हम बोनी किस्में लगाते हैं हम वैज्ञानिक भाषा में उसको डिटर्मिनेट बोलते हैं। उनके फूल इकट्ठे आते हैं उनके फल इकट्ठे आते हैं और वो इकट्ठी ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब बरसात के मौसम में है तो हम बोनी किस्में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा बरसात के मौसम में कई बीमारी पैदा करने वाले फंगस हैं वो मिट्टी से उछलकर पत्तों पर या पौधों पर गिरते हैं और बीमारियां आ जाती हैं। तो इसके लिए हमें चुनाव करना पड़ता है। जैसे टमाटर की बात करूं तो ऊंची बढ़वार वाली या लंबी किस्मों का बेलदार किस्मों का। इसी तरह फ्रॉस बीन की भी ऐसी बात है उसमें भी हम अगर गर्मी में लेंगे तो बोनी किस्में बरसात में लेंगे तो हम ऐसी किस्में लेंगे जिनको जो बेलदार होंगी ताकि हमारा बरसात की बौछारों से जो मिट्टी उछलती है उससे कम नुकसान हो। मुख्यतः भिंडी गर्मी में भी लगेगी बरसात में भी लगेगी। जहां पर सिंचाई की सुविधा है वो किसान तो इसको मई में भी लगा सकते हैं जून में भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ किसान हमारे इस क्षेत्र में ऐसे भी हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उन किसानों को तो बरसात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो जैसे ही बरसात की पहली बुछार होती है या जिसे हम प्री मानसून रेन्स कहते हैं भिंडी एक बड़ी हमारी प्रमुख फसल है गर्मियों की भी और बरसात में भी और ऐसे क्षेत्रों में भी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा जो बेलदार फसलें हैं जिसमें खीरा घिया तोरी करेला पंडोल कद्दू पर जाती है सारी सब्जियां हम बरसात के मौसम में ले सकते हैं। इसके अलावा बैंगन है मिर्च और इसके अलावा जो मसालेदार फसलें जिन्हें हम कहेंगे जैसे अदरक है हल्दी है अरवी है या घंडियाली जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उनकी खेती भी इस मौसम में हम कर सकते हैं।
2: तो इस मौसम में कंद जो है जमीन में दबे रहते हैं उसमें तो पानी की निकासी जो है सुनिश्चित आवश्यक होती होगी।
3: हाँ बिल्कुल ना सिर्फ इन कंद वाली फसलों में दूसरी जो फसलें हैं उनमें भी पानी की निकासी बहुत महत्वपूर्ण है
2: खासकर भिंडी में।
3: हाँ भिंडी में या टमाटर में क्योंकि जैसे ही अगर इनकी जड़ों में पानी खड़ा हो जाएगा तो इनको पौधे भी क्योंकि आप जानते हैं सांस लेते हैं तो इनको सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी हमारी मिट्टी में हो जाएगी और ये सांस लेने में इनको समस्या हो सकती है। इसके लिए हम सिफारिश करते हैं किसान भाइयों कि आप बरसात के मौसम में जब सब्जियां लगाएं तो क्यारी जो है वो जमीन से थोड़ी सी आधा फुट ऊंची उठी हुई होना चाहिए और उसके हर 1.5-2 मीटर के बाद एक गहरी नाली जैसी आप चैनल जैसी निकालें ताकि जो एक्सेस या ज्यादा पानी है वो उससे होता हुआ बाहर निकल जाए। तो क्यारी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसमें पानी नहीं खड़े होना चाहिए। भिंडी की दो प्रकार की किस्में होती हैं एक को हम सादी किस्में बोलते हैं और एक को संकर किस्में बोलते हैं। सादी किस्में जो हैं वो जो हमारे सरकारी तंत्र के विश्वविद्यालय हैं या ICR के इंस्टीट्यूट है वहाँ से निकाली गई हैं। उसमें सबसे अच्छी जो हमारे इस एरिया के लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की है उसका नाम है पालम कोमल। इसके अलावा P8 एक अन्य किस्म है परभनी क्रांति वर्षा उपहार अर्का अनामिका अर्का अभय ये कुछ सादी किस्में हैं इन और इनका बीज आप चाहें तो अगले साल के लिए रख सकते। संकर किस्में जो होती हैं उनका बीज आपको हर वर्ष नया लेना पड़ता है और ये मुख्यतः निजी कंपनियों की किस्में होती हैं। तो इसमें इंद्रनील तुलसी क्रांति पूर्वी ऐसी कुछ अच्छी किस्में प्राइवेट निजी कंपनियों की हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कद्दू प्रजाति सब्जियों में भी दोनों प्रकार के बीज होते हैं। जो किसान भाई देसी के नाम से आजकल या ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती कर रहे हैं, उनको तो हम सलाह या हमारी यही रहती है कि आप जो देसी या हमारी उन्हीं के बीज उसमें लगाएं तो उनका स्वाद जो है वो संकर किस्मों से बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ किसान भाई जो कमर्शियल खेती करते हैं तो खीरे में हमारे पास मालव या मालिनी, काजल नाम से ऐसी अच्छी संकर किस्में हैं जिनको आप बाजार से लेकर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं घिया की बात करें तो आर्या, MGH1 नाम से किस्में हैं, इनको लगा सकते हैं। अगर लौकी की बात करें तो MGH8, MGH4 और अनमोल नाम से एक किस्म आती है संकर किस्म, उसको भी लगा सकते हैं। एक पूसा समर प्रोलिफिक लौंग, ये सादी किस्म है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं लौकी की। करेले की संकर किस्म की बात करें तो एक पाली नाम से एक संकर किस्म आती है, तो उसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बरसात के मौसम में खेत की तैयारी है, तो इसकी तैयारी हमें बरसात का इंतजार नहीं करना है, ये तैयारी हमने गर्मी के मौसम से ही शुरू कर देनी है। जैसे कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि हमारी मिट्टी में नाना प्रकार के कीटाणु हैं, बीमारी पैदा करने वाले फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो हम क्या करते हैं जब जून के महीने में काफी गर्मी पड़ती है तो उस मौसम में हम गहरी एक दो जुताइयां करते हैं इस तरीके से कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए। उसका अभिप्राय ये होता है कि नीचे जो कोई कीटाणु ऐसे छुपे बैठे हैं बीमारी पैदा करने वाले वो ऊपर आकर गर्मी से मर जाएं अपने आप ही। उसके बाद जो दूसरी बात मैंने कही कि जो हमारी क्यारी है वो जमीन से आधा फुट कम से कम उठी होनी चाहिए और खेत की साइडों में पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियां बननी चाहिए ताकि पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। और जहां तक सब्जी के खेत की बात है और उसमें खाद प्रबंधन की बात है तो सब्जियों में हम कहते हैं कि हमारे खेत में 10 क्विंटल तक जो है अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद एक कनाल में हमें डालनी चाहिए। और अगर हमारे पास केंचुआ खाद कुछ किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 5 से 6 क्विंटल तक भी हो सकती है। जो कमर्शियल खेती करते हैं किसान भाइयों, तब आपको हम कहते हैं कि हमारे पौधों को तो 16 तत्व चाहिए हैं, तो हमें उस तत्वों को पूरा करने के लिए हमें NPK तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हर खेत का मिट्टी का परीक्षण होता है, उसके बाद खाद की सिफारिश की जाती है, लेकिन मोटे तौर पर हम कहते हैं कि गर्मियों की फसलों में हम 7-8 किलो 12-32-16 खाद एक कनाल में डाल दें तो हमारी गर्मी की सब्जियों के लिए ये पर्याप्त होती है। जैसे मैंने कहा 16 तत्व चाहिए हैं तो कुछ सूक्ष्म तत्व भी चाहिए होते हैं, तो सूक्ष्म तत्वों के लिए भी एक एग्रोबिट नाम से एक खाद बाजार में भी आती है, कृषि विभाग में भी आती है, तो ऐसी एक कनाल के लिए 1 किलो अगर आप सूक्ष्म खाद के लिए जो एग्रोबिट नाम की खाद है उसका इस्तेमाल कर लें तो जो सब्जियों में हमारा रंग अच्छा आएगा, आकार अच्छा आएगा, उनका खुशबू अच्छी रहेगी, फ्लेवर अच्छा होगा, इसके लिए सूक्ष्म तत्वों की खाद भी डालना जरूरी है।
2: जी, तो ये मात्रा क्या रहती है डॉक्टर साहब?
3: मैंने तो कहा जैसे हर सब्जी का और हर खेत के लिए मिट्टी का परीक्षण करने के बाद ही मात्रा निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम मिट्टी का परीक्षण करवाने में इतना टाइम लग जाता है या उसका रिजल्ट आने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारे खेत की बिजाई का समय हो जाता है। तो हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि एक कनाल में 6 से 8 किलो आपको लगता है कि उस खेत की अच्छी उपजाऊ क्षमता है तो आप 6 किलो डालिए, अगर थोड़ी सी कम लगता है तो आप उसमें 8 किलो तक 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करें। और जैसे एग्रोबिट या जो सूक्ष्म तत्वों वाली मैंने कहा खाद है उसको 1 किलो प्रति कनाल की दर से आप इस्तेमाल कर सकते।
2: तो ऐसे में बिजाई का तरीका कार क्या होना चाहिए?
3: तो ये जैसे मैं भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी में हम 1.5 से 2 फुट तक का फासला रखते हैं, और गर्मी में हम 1.5 फुट का रखते हैं, बरसात में उसको 2 फुट कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बरसात में उनकी जो ग्रोथ है पौधों की बहुत ज्यादा हो जाती है और काफी लंबे और फैलते भी हैं, तो 2 फुट की दूरी पर कतार से कतार की दूरी भिंडी में रखते हैं। और जहां तक पौधे से पौधे की बात है तो 10 से 15 सेंटीमीटर का हम फासला जो है प्रति पौधे में रखते हैं। इसी तरह अगर कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो हम क्या करते हैं कि 1-1 मीटर पर 1 फुट ब्यास का एक गोला सा बना लेंगे और उसमें 3-3 बीज लगा देते हैं, 1-1 मीटर के फासले पर ये गोला बनाएंगे और 3-3 बीज लगा देंगे, और फिर उन बीजों से को हम वहां पर उगने देते हैं, उस वहीं पर खाद मिलाएंगे वहीं पर। और क्या ध्यान रखना है बेलदार फसलों में किसान भाइयों, बरसात के मौसम में उनको एक छतनुमा एक ढांचा आपको बनाना पड़ेगा जिसमें वो बेलें चढ़ जाएं। अगर वो आप रस्सी से बना लें, नायलॉन की सूतली से बना लें, अगर कोई बांस के डंडे लगाकर बना लें बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो बरसात के मौसम में बेलदार फसलें नहीं चलेंगी, जो फल मिट्टी के संपर्क में आएगा वो सड़ जाएगा, इसलिए उसका उस छत नुमा ढांचे के ऊपर चढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारा टमाटर बरसात के मौसम में भी लगता है गर्मी में, तो गर्मी में तो हम उसकी दूरी 1.5-2 फुट से ज्यादा नहीं रख, 1.5 फुट ही रखते हैं आमतौर पर। लेकिन बरसात के मौसम में अगर हम टमाटर लगा रहे हैं तो हम जो लाइन से लाइन की दूरी है या पंक्ति से पंक्ति की दूरी है उसको कम से कम 1 मीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट तक रखेंगे। बीच में हमें पौधों को हवा भी अच्छी मिलेगी, प्रकाश भी अच्छा मिलेगा, हमें आने जाने के लिए भी सुविधा हो जाती है। इसी तरह भिंडी का भी मैंने जैसे बताया कि गर्मी के मौसम में 1.5 फुट और बरसात के मौसम में 2 फुट की दूरी हमें रखनी चाहिए।
2: जी, इसके बाद जो है जैसे ही हम बिजाई करते हैं भिंडी की फसल की बात की जाए तो भिंडी की फसल जो है कुछ नालियों में लगाते हैं, कुछ नाली के ऊपर
3: बीड़े जिसको हम
2: बीड़े कहते हैं। जी,
3: अगर किसान भाइयों अगर आप ऊंची क्यारी बनाई है उस क्यारी की जो चौड़ाई है आप 1.5 से 2 मीटर तक रखिए तो उस 2 मीटर के बीच में आपकी कम से कम 4 से 5 पंक्तियां आ जाएंगी। उस तरीके से भी लगाया जा सकता है। और अगर आप हर पंक्ति में उसकी क्यारी बनाना चाहते हैं या उसको क्या कहते हैं मेड़ बनाना चाहते हैं या बीड़ बनाना चाहते हैं तो वैसा भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके किए जा सकते हैं। आप 1.5 से 2 मीटर जो चौड़ाई की क्यारी बनाएं तो आपको मेहनत कम पड़ेगी। हर एक पंक्ति के लिए एक भीड़ बनाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी लेकिन उसमें पानी की निकासी ज़्यादा अच्छी होती है। बरसात के मौसम में जो खरपतवार हैं बहुत ही अधिक मात्रा में खेत में आते हैं और हमें लगता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपको मैं बताऊं ये हमारे कीड़े मकोड़े या बीमारियों से ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते हैं लेकिन वो देखने में नहीं आता। लेकिन जब हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं निकालते हैं तब हमें लगता है कि इसकी वजह से 30 से 40% तक हमारा नुकसान कई बार हो जाता है। तो खरपतवार प्रबंधन के मौसम में बड़ा जरूरी है। आजकल आप जानते हैं किसान भाइयों की आजकल लेबर की समस्या भी आप लोग फेस करते हैं तो कई बार हमें लेबर नहीं मिलती है तो वो घास निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम रासायनिक तौर पर भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः हम सब्जियों में दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है पेंडीमिथालिन, दूसरी का नाम है एलाक्लोर और एक अन्य करना चाहें तो बेसालिन नाम की एक दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। और इन दवाइयों का अगर बीज वाली फसल है तो उसको बिजाई के 48 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना होता है में से किसी को भी। और अगर हम अगर ट्रांसप्लांटिंग या मतलब जिसकी रोपाई हम करते हैं जैसे टमाटर बैंगन है तो इसके लिए हम एक दिन पहले स्प्रे करेंगे और उसके बाद एक दिन बाद इसका रोपाई करेंगे हम फसल की।
2: डॉक्टर विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी किसान साथी तुहे हुण लेके चलना हां सब्जी मंडी दे थोक भाव दी तरफ, तां पंच जी दसा
1: जी। तो सब तो पहले गल करिए आलू की, तो आलू अज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहा 10-20 रुपए प्रति किलो, प्याज 34-35, टमाटर 15-30, लहसुन 180-200, अदरक 200-210, शिमला मिर्च 65-70, अरबी 25-30, खीरा 20-22 रुपए प्रति किलो, मटर 105-110, फुल गोभी 40-55 और बंद गोभी 20-28, बैंगन 30-36, कद्दू 15-20, मूली 23-25, टिंडा 45-50, पालक 35-40 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च 30-35, धनिया 200-250 रुपए प्रति किलो, तोरी 30-32, भिंडी 30-48, घीया 30-50, कटहल 25-40, करेला 30-45, फ्रस बीन 60-70, गाजर 25-30, मशरूम 150-160, गंडेली 45-50 रुपए किलो। कन्नै ही फलों की गल करिए, फलों च सेब 100-180 रुपए प्रति किलो, केला 50-60 रुपए प्रति दर्जन, अनार 100-110, अनानास 35-40, अमरूद 80-90, मौसमी 50-60, कन्नै पपीता रे अज 45-60 रुपए प्रति किलो।
0: जी तो किसान साथियों तुहां मंडी दे थोक भाव सुनी ले होने, कन्नै जेड़े हां दे किसान साग सब्जियां बेचते भी हैं
1: जी,
0: तो तिने भी जरूर भाव पता होना चाहिए। इस दे बाद थोड़ा जिहा तुहें मौसम ने भी रूबरू कराना है, जो कि मौसम खास करी बरसाती की गल करन तां इस वक्त थोड़ा जिहा हां कुछ गल्लां दा ध्यान रखना पौंदा। तो मौसम धर्मशाला का अज न्यूनतम रहा 19 डिग्री सैलसीयस, कन्नै अधिकतम 21 डिग्री सैलसीयस, चंबा का न्यूनतम 20, कन्नै अधिकतम 26 डिग्री सैलसीयस, ऊना का न्यूनतम 32 डिग्री सैलसीयस, कन्नै अधिकतम 36 डिग्री सैलसीयस, कांगड़ा का न्यूनतम 32 डिग्री, कन्नै अधिकतम 36 डिग्री सैलसीयस। ये तो रहा मौसम का अनुमान। कन्नै तुहां सारिआं श्रोतिआं ने यह विनती है भी बरसाती का मौसम है जिहड़ा हां दे भूस्खलन दा खतरा बनी रहिंदा, तो कोशिश करने तुहां कि नदी नाले की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। कन्नै जिहड़े किसान साथी ने समय समय पर अपने खेतों में अपनी जमीन पट्टी चक्कर मारे होन, कजो कि कोई भी फसल है, चाहे छलियां है, धान है या कोई साग सब्जी है, जे जिथू ज़्यादा पानी का भराव हो जाता है तो तभी तुहां दी फसल नुकसान हो सकता है।
1: जी तो सानू ताई जी कार्यक्रम जे अंत एक होर हां प्यारा दे लोक गीत सुन देन
0: जी।

0: किसान साथियों तुहां वल पुजदा है प्यारा प्यारा लोक गीत
1: जी
0: कने समय भी संपन्न होवा दा है। तां जांदे जांदे दसींदे वी कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह
1: कने तकनीकी सहयोग रिया सुरेंद्र कपूर और दा हुण अपने ट्याले दे सदस्य पंच जो
0: कने शन्नो ताई जो दिया अनुमति।

खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक व परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। लाहौल स्पीति में उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कडूनाला के समीप वाहन पर चट्टाने गिरने से 13 लोगों की मौत, एक घायल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा ने हासिल किया राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र। केंद्र से अगले 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष मिलेगी 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। और लाहौल स्पीति की राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा कल से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी।
1: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और हम आपसे जो चर्चा
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने इसे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कानून को और अधिक सख्त बताते हुए पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करना ये स्पष्ट संदेश देता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। लाहौल स्पीति जिला में उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कडूनाला के समीप पहाड़ी से अचानक गिरी चट्टान की चपेट में आने से एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवानी महला ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि 12 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, जबकि एक शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस दर्दनाक हादसे में एक 6 माह के शिशु की भी दुखद मृत्यु हुई है। ये वाहन कुल्लू से पांगी जा रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उपायुक्त लाहौल स्पीति को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायल को बेहतरीन इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कडूनाला वाहन दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आवश्यक भाषा कौशल का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशी भाषाओं के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने श्रम व रोजगार विभाग को विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड करने को कहा। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक केवल 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ही ये राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला है। इस उपलब्धि के साथ केंद्र की ओर से भोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अगले 3 वर्षों तक 2,00,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। डॉक्टर ऋषभ कुमार के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक केवल 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ही ये राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला है। इसमें हमीरपुर जिला के भोटा, नालटी और जंगलबैरी व चंबा जिला के 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इस उपलब्धि के साथ भोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अगले 3 वर्ष तक केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस राशि का उपयोग मरीजों की सुविधाओं में सुधार, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक जांच उपकरण उपलब्ध कराने में किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की समृद्ध देव परंपरा की प्रतीक राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा कल 25 जुलाई से शुरू हो रही है। करीब 2 दशक बाद आयोजित हो रही ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होगी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल की समृद्ध देव परंपरा का प्रतीक राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा इस वर्ष 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है। लगभग 2 दशक बाद आयोजित हो रहे इस पावन यात्रा में लाहौल के अधिष्ठाता देव राजा घेपन देवी हिडिम्बा और ठारानाग देवताओं के साथ अपने भ्राता देवता जमलू से मिलने के लिए मलाणा रवाना होंगे। करीब 136 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि राजा घेपन इससे पहले 1970, 1984, 1994, 2005 और 2008 में भी मलाणा की यात्रा कर चुके हैं। ऐतिहासिक देव यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लाहौल और कुल्लू के बीच सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और भाईचारे का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालुओं में इस पावन यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज दूसरे दिन भी कांगड़ा जिले की बोह घाटी में आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में बनाए गए राहत शिविर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करवाया। इस दौरान 150 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। केवल सिंह पठानिया ने कांगड़ा और चंबा जिलों की सीमा पर स्थित लाम गांव में भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नशा मुक्त समाज और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वच्छ जीवन अपनाने का संदेश दिया। युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक व परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। लाहौल स्पीति में उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कडू नाला के समीप वाहन पर चट्टाने गिरने से 13 लोगों की मौत, 1 घायल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा ने हासिल किया राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र। केंद्र से अगले 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष मिलेगी 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। और लाहौल स्पीति की राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाणा यात्रा कल से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
5: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
4: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
5: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
4: जानकारी लें, अधिकार जाने।
5: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश 172115 से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना निचार स्थित भावानगर के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद तथा सहायिकाओं के 3 पद को भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 24 अगस्त 2026 को कार्यालय उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भावानगर में प्रातः 11 बजे आयोजित किए जाना सुनिश्चित किया गया है। आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र यानी फीडर एरिया की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर के कार्यालय में दिनांक 18 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय मूलतः 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार नायब तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती हैं तो सहायिका का मानदेय वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्रों की सूची। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम उर्नी, ग्राम पंचायत का नाम उर्नी। यहां पर रिक्त पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र निगुलसरी, ग्राम पंचायत त्रांडा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पद रिक्त है। आंगनबाड़ी केंद्र कंडार, ग्राम पंचायत नाथपा। पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का नाम छोलतू 1, पंचायत पुनंग। पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आंगनबाड़ी केंद्र मीरू 1, ग्राम पंचायत मीरू। पद सहायिका के लिए आंगनबाड़ी केंद्र यांगपा 1, ग्राम पंचायत का नाम यांगपा 1। रिक्त पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर 172115 से जानकारी ले सकते हैं। रोजगार समाचार अभी आपने सुने।
7: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
8: वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से

0: नज़र रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्चा परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा, लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटास ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। श्रोता लीजिए सुनिए मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस।

कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
6: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
7: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9।

जी श्रोता, कयामत हिंदी भाषा की रोमानी थ्रिलर फिल्म है और इसका निर्देशन किया हैरी भवेजा ने और मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म में थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, संजय कपूर, अरबाज खान, ईशा कोप्पिकर, नेहा धूपिया और आशीष चौधरी।

रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम कारवां सुरों का। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए श्रेया घोषाल और ओमर नदीम की आवाज़ों में। ये गीत हमने लिया है जिस फिल्म से, उसका नाम है यमला पगला दीवाना।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म गुलाम से, और इस गीत में आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए लेकर आए हैं ए.आर. रहमान, हारमोनी अनुराधा और अनुपमा की आवाज़ों में दिल से फिल्म का ये नगमा।

0: व्यक्ति संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो

0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
3: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। उधर चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोता लीजिए सुनिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। शुरुआत कर रहे हैं सिम्बा फिल्म के इस गीत के साथ। राहत फतेह अली खान और असीस कौर का गाया हुआ ये गीत है।

कार्यक्रम में लीजिए, आपको सुनवाने जा रहे हैं शेरशाह फिल्म का ये नगमा। गीतकार संगीतकार तनिष्क बागची और आवाज़ें हैं असीस कौर और जुबिन नौटियाल की।

0: बॉलीवुड
1: बीट्स ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत है, फिल्म लुका।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बैड न्यूज़ से। इस गीत को लिखा और गाया है करुण औजुला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म धड़क 2 से, जिसे लिखा है गुरुप्रीत सैनी ने, धुन बनाई है रोचक कोहली ने, और आवाजें हैं दर्शन रावल और जॉनिता गांधी की।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए गैरी संधु और नेहा कक्कड़ का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे।

बॉलीवुड बीट्स ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। श्रोता लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी

महल फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है शकील बदायनी ने, धुन बनाई है रवि ने। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने और फिल्म का नाम है दो बदन।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म लव मैरिज से। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले को फिल्म नवरंग में।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP

0: और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency, NTA, has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts, chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh